करती है हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। सुबह 7 बजे श्रोता साथियों हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन। नन्हे मुन्ने श्रोता साथियों के साथ जहां होंगी रोचक कहानियां और ढेर सारी मस्ती। यह कार्यक्रम बच्चों की दुनिया को ज्ञान और संस्कार के रंगों से सजाता है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और मेरे साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। साथियों इसी के बाद हम रुक करेंगे सुबह 7:30 पर। आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही देश की असली शक्ति है। इस कार्यक्रम में मिलेंगी करियर से जुड़ी जानकारियाँ और नए विचारों को मंच, ताकि हर युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर और मेरे साथ होंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों सुबह 8 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सच्चा स्वराज, क्योंकि स्वराज केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता का संदेश भी है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। इसी के बाद दोस्तों हम रुक करेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास और परंपराओं की ओर। लोक संगीत में बसती है हमारी मिट्टी की पहचान, तो तैयार हो जाइए साथियों ढोलक बांसुरी मंजीरे की मधुर धुनों पर झूमने के लिए कार्यक्रम लोक संगीत में। इसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 8:30 पर। इसी के बाद दोस्तों हम फिर से बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर सुबह 9 बजे और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक सुबह 9:30 पर। तो श्रोता साथियों जैसा कि रूपरेखा कार्यक्रम की आप जान ही पा रहे हैं, अब समय है सीधे आपसे जुड़ने का और आपकी बात सुनने का। कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, जहां आप सभी सुनेंगे आपकी राय, आपके अनुभव और समाज से जुड़ी बातों को। इसी के आगे साथियों दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो है सिर्फ आपके नाम। इस कार्यक्रम में बजेंगे वही गीत जो आपके पसंदीदा होंगे। आप अपनी फरमाइश और संदेश के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों जुड़े रहिए सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो के साथ में, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज ही है सबसे खास। तो श्रोता साथियों यह तो थी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सुनहरी सुबह की कार्यक्रम आराधना से।

0: बेटे सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सद्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें, और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश, धर्म की हानि, वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं।
1: आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े। परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक है। आप माता पिता हैं ना, यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी, मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी? इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है।
0: आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूं। एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया, वो फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वो पुनः अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली, राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत मायके वापस चली गई और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। वो व्यापारी तनिक घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वो समय पर पहुंचा, उसने राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न हुए और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी, स्वर्ण आभूषण दिए। जब व्यापारी घर पर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास। हर ओर प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना, दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है, परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदा

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बनो ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो गणमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बोनो अमे अमारे टेम माते हाजिर थे जह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने ली ने एक ना विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज हमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है कि आपड़े पौधों में पोषक तत्व की कमी ना हो कारण है ये समाधान न हो उपाय थी सके। तो बहन बोनो अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में हमारी अब तक की घना कनी बातें थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू कर एने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपड़ी बातें। तो भाई बोनो आप हमर तरह जो आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: तो उनकी वृद्धि रुक जाती है, उत्पादन घट जाता है, रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है, ये सब समस्याएं प्रकट हो जाती है। तो पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण चीज है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसके लिए अपन, आपने जैसे बताया कि कौन कौन से पोषक तत्व है, तो पोषक तत्व की यदि अपन बात करें, खास करके अपन फसल के अंदर पोषक तत्व की बात करें,
1: जी जी,
0: तो पौधों के अंदर मुख्य 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और इसमें जो मुख्य पोषक तत्व है वो अपन जानते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश।
1: बिल्कुल,
0: ये तो मुख्य है। लेकिन दूसरे नंबर के यदि पोषक तत्व की बात करें तो उसके अंदर सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम।
1: बिल्कुल।
0: और लेकिन बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं। जो तीसरे सूक्ष्म पोषक तत्व की अपन बात करें तो इसके अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्व जो है उसके अंदर जैसे जिंक है, आयरन है, बोरोन है, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सब चीज सूक्ष्म पोषक तत्व में है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये अपन जानते हैं कि भी उसकी जो कमी है वो, तो कमी से अपन को कैसे पता चलता है कि इसकी कमी है।
1: बिल्कुल।
0: तो अपन जैसे अपन ये पहचानेंगे भी नाइट्रोजन की कमी है तो उसकी पहचान अपन कैसे करेंगे।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना, क्योंकि ये तो पोषक तत्व की जानकारी तो अपन ने ले ली, लेकिन पर्टिकुलर कोई तत्व की कमी है तो अपन को कैसे पता चलेगा कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है तो क्या प्रॉब्लम है, फास्फोरस की कमी है तो इसमें कैसे पहचाने अपन।
1: जी जी,
0: है ना। तो इसके अपन देखेंगे नाइट्रोजन की यदि कमी है तो पौधों की जो पत्तियां जो पीली पड़ने लगती है,
1: बिल्कुल,
0: पौधे का जो विकास है ना, वृद्धि दर जिसको बोलते हैं, वृद्धि तो वो कम हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है, तना पतला और कमजोर हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: उसका और फसल का जो रंग है हल्का सा हरा दिखाई देता है, तो अपन को खेत में जाते हैं तुरंत पता चल जाता है कि इसके अंदर या बढ़वार नहीं हो रही है, पीले पड़ रहे हैं, तो तुरंत किसान खाद डालने का प्रयास करता है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये सब उसकी नाइट्रोजन की कमी है। तो अब साथ में अपन नाइट्रोजन की जो कमी है उसका साथ में यदि अपन देखें कि उसका समाधान भी यदि देख ले, कि यदि नाइट्रोजन की कमी हो इस तरह के यदि उसकी पहचान है तो फिर उसका समाधान अपन क्या करें।
1: जी जी।
0: तो एक तो अपन ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो खास करके जो उकेड़ा वाली खाद है, गोबर की सड़ी हुई जो खाद है, एक तो उसका प्रयोग करें। वर्मी कंपोस्ट की अपन बार बार अपने रेडियो के माध्यम से बात करते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं।
1: जी जी।
0: कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं, घन जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जो चीज है इसके अंदर, यदि दलहनी फसल चक्र शामिल यदि किया जाए इसके अंदर,
1: जी जी,
0: तो वो ये जो पहचान बताई थी ना नाइट्रोजन की कमी की, वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगी।
1: जी जी।
0: तो यदि अनाज जैसे मक्का है, मक्के के साथ यदि दलहनी वर्ग तुअर, उड़द, मूंग यदि डाल दिया जाए तो ये नाइट्रोजन ऑटोमेटिक उसकी जड़ से वो ले लेता है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: ये उसकी मतलब समाधान प्रक्रिया ये है। इसकी दृष्टि से अपन आगे फास्फोरस की कमी है तो उसकी पहचान क्या है।
1: बिल्कुल।
0: तो फास्फोरस की यदि कमी है तो पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है, है ना, बिल्कुल बंद नहीं होती है, जड़ें कमजोर हो जाती है, पत्तियों में बैंगनी और गहरा रंग दिखाई देता है।
1: बिल्कुल।
0: ये फास्फोरस यदि कमी है तो पत्तियों में बैंगनी और गहरा रंग दिखाई देता है, फूल और फल कम आते हैं, इसके अंदर जो प्रोडक्शन आना चाहिए, उत्पादन आना चाहिए, वो कम आ जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये फास्फोरस को अपन को उसकी जो पूर्ति करनी है तो खास करके इसके अंदर पीएसबी जीवाणु जिसको बोलते हैं, है ना, घुलनशील जीवाणु, पीएसबी जीवाणु का उपयोग किया जाता है। एक महत्वपूर्ण चीज जो, यदि फास्फोरस आपके खेतों के अंदर कमी नहीं रखनी है तो जैसे हड्डी का चूरा है, तो हड्डी को आप, कोई फल है आपका और इसमें फास्फोरस की कमी दिखाई दे रही है, कोई फ्रूट बराबर नहीं अंदर आ रहे हैं, तो हड्डी का टुकड़ा करके गड्ढा करके आप चारों तरफ डाल दीजिए तो वो फास्फोरस की कमी बिल्कुल उसकी खत्म हो जाएगी और फल चालू हो जाएगा। तो ये फास्फोरस का इसका आप समाधान
1: कर सकते हैं। बिल्कुल सर।
0: उसका मेन जो पोषक तत्व तीसरा जो बचा है वो पोटाश है। नाइट्रोजन की बात हो गई, फास्फोरस की बात हो गई, और पोटाश की अपन बात करें तो उसकी जो पहचान है, पूरा कलर आ जाता है पत्तियों की जो किनारी है वहां पर, और पौधा कमजोर हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और रोग एवं सूखे प्रभाव से अधिक दिखाई देता है, बीमारी लग जाती है, रोग लग जाता है, सूखा हो जाता है, तो ये पोटाश की कमी है।
1: बिल्कुल।
0: तो एक तो इसके अंदर यदि अपन देशी बात करें, जैविक की बात करें, तो लकड़ी की जो राख है इसका यदि प्रयोग करेंगे तो पोटाश उसकी मात्रा पूर्ण होती है।
1: जी जी।
0: और खास करके जो जैविक खाद है अपना,

0: वो जैविक खाद की यदि डालेंगे तो भी पोटाश की पूर्ति हो जाती है। तो ये चीज उसका समाधान की अपन बात करते हैं। खास तीसरा जो अपना जो पोषक तत्व था पोटाश, उसकी पहचान और समाधान की अपन ने बात की।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और किस तरीके से इन पोषक तत्वों की कमी होने पर हम समाधान के उपाय कर सकते हैं, तो सर और भी कोई पोषक तत्व हैं जिसकी कमी की पहचान हमें करनी चाहिए और समाधान के उपाय हमें करने होंगे?
0: बिल्कुल, इसमें बहुत सारे हैं। जैसे जिंक की बात करें, जो अपन सूक्ष्म पोषक तत्व की बात की थी ना, तो इसमें जो जिंक की बात करें तो नई पत्तियां छोटी रह जाती है, पत्तियों में धारियां दिखाई देती है। मक्का और धान में यह समस्या अधिक दिखाई देती है यदि जिंक की कमी रही तो।
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो जिंक सल्फेट का उपयोग करने का एक तो है ना, जैविक पदार्थों का जितनी मात्रा में आप बढ़ाएंगे, खास करके यदि जैविक खाद जो अपन जितने बढ़ाएंगे तो जिंक की प्रॉब्लम लगभग नहीं रहती है।
1: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आपने हमें बताया कि कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि इसका प्रभाव हमारी फसल पर कैसे पड़ता है और क्या नुकसान हमारे किसान भाई बहनों को झेलना पड़ता है।
0: बिल्कुल, फसल पर तो जैसे मैंने बताया बहुत प्रभाव आपको दिखाई देता है। एक तो किसान के अंदर उसकी जो उत्पादन क्षमता घट जाती है, पूरा उत्पादन नहीं ले पाता है। दूसरी चीज, यदि बीमारी लग गई तो इधर पोषक तत्व की कमी है लेकिन दूसरा खर्चा वो दवाई में ज्यादा डाल देगा।
1: बिल्कुल,
0: जिसकी कोई असर नहीं होगी, क्योंकि जो बीमारी लग रही है वो पौधों को पोषक तत्व की कमी के कारण हो रही है।
1: जी सर।
0: तो जितना हो सके शुरुआत में अपने खेत के अंदर पूर्ता पोषक तत्व वाला खाद, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि उकड़ा वाला खाद, वर्मी कम्पोस्ट, जीवामृत, घन जीवामृत, यदि इसका उपयोग किया जाए तो पोषक तत्व की कमी कम रहती है और किसान की जो आय जो घट होती है वो नहीं होती और आमदनी उसकी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने हमें कार्यक्रम में बहुत अच्छे तरीके से ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, तो अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: अंत में मैं एक श्रोता साथियों को बताऊं, उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो खास करके पोषक तत्व डायरेक्ट यदि अपन सीधे खेत के अंदर जाके जो पोषक तत्व देखेंगे तो हो सकता है पता नहीं चले, लेकिन यदि आपके खेत के अंदर मिट्टी परीक्षण यदि करवाई जाए तो मिट्टी परीक्षण से पता चल जाता है कि मेरे खेत के अंदर कौन से पोषक तत्व की कमी है।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: उसके आधार पर यदि आप यदि खाद की मात्रा अपने खेत में डालेंगे तो ज्यादा किसान फायदेमंद रहेगा और इसका लाभ ले सकता है, क्योंकि आजकल नई टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ गई है तो उसका किसान भाई को उपयोग करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि मैं यूरिया डालता रहूंगा, डीएपी डालता रहूंगा और मुझे खाद मिल जाएगा पोषक पूर्ता प्रमाण में, तो वो नहीं करना है। मिट्टी का परीक्षण करके अपना जो जैविक खाद है, गोबर का खाद है, उसका उपयोग करना है।
1: बिल्कुल सर।
0: और विशेष तौर पे फसल का विविधीकरण अपनाना है ना, ये महत्वपूर्ण चीज है। और मल्चिंग करें, मल्चिंग का भी इसमें काफी अच्छा है। देसी बीज एवं जलवायु अनुकूल खेती अपनाना है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये अपना पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। अंत में मैं किसानों के लिए महत्वपूर्ण जो संदेश देना चाहूंगा कि खेत में यदि पौधों का रंग बदल रहा है, वृद्धि रुक रही है या पत्तियों पर असामान्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसे केवल रोग न समझे। जैसा मैंने बताया, यह पोषक तत्व की कमी का संकेत भी हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: सही समय पर पहचान और उचित पोषण प्रबंधन से फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, लागत कम की जा सकती है और मिट्टी की उर्वरता भी लंबे समय तक बनाए रखी जा सकती है।
1: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को बहुत ही प्यारा सा संदेश दिया है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ભાઈ બોનુ સિમકી આપણે આપણા વાસમી પટેલજી જોડે તક હતા ને એણે આપણાને ઘણી અસલ તરીકા થકી ઘણા આકાની વાતે બતાડી હૈ આશા કરો હો કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટા પડવાનું તો સૂટા તો પડા પણ સાથે પહેલા હમરી લાયક ઓર ગીત ને મોરે પડા સૂટા

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारस। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सच्चा बचपन में जब भी हम हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ता है। आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है अपनी मातृभाषा में स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि सेहत सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन अच्छी सेहत के लिए केवल भोजन ही काफी नहीं होता है, बल्कि यह समझना भी जरूरी है कि क्या खाएं, कितना खाएं और सही जानकारी हमें किस तरीके से समझ में आती है। हमारे गांव समाज में स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी बहुत सी बातें पीढ़ियों से चली आ रही हैं, लेकिन जब यही जानकारी हमारी अपनी मातृभाषा और स्थानीय भाषा में हमारे अपने उदाहरणों के साथ हमें समझाई जाए तो हम और भी आसानी से हमारे जीवन का हिस्सा उन्हें बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अपनी भाषा में मिली स्वास्थ्य और पोषण की सही जानकारी किस तरह हमारे परिवार और बच्चों और पूरे समुदाय के लिए बदलाव ला सकती है। बातें अवश्य हमारी आपसे रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों मैंने गीत से पहले आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी मातृभाषा में स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी हम किस तरीके से समझ सकते हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ विषय विशेषज्ञ मौजूद है, तो आइए सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं ढेर सारी बातों को, फिर हम हमारी बातें आगे जारी रखेंगे। मैम नमस्कार।
1: नमस्कार अंजलि जी।
0: मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जैसा कि मैम आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है अपनी मातृभाषा में स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी हम हमारे श्रोता साथियों को कैसे दें। तो सबसे पहले मैं आपसे कार्यक्रम में आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: जी मेरा नाम स्नेहलता स्वर्णकार है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तलवाड़ा में व्याख्याता की पोस्ट पर हूँ हिंदी विषय से।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आपने आपका परिचय हमें बताया है और आज 14 सितंबर का दिन है, आज के दिन हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं और पोषण माह तो हमारा जैसा कि चल ही रहा है, तो सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि हम अपनी मातृभाषा में स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी कैसे दे सकते हैं और ये जानकारी देना क्यों जरूरी है।
1: देखिए हम सभी जानते हैं कि जानकारी तभी उपयोगी बनती है जब वह हमें समझ में आए और मातृभाषा में कही गई बात सीधे हमारे मन को छूती है। मान लीजिए किसी माँ को यह समझाना है कि बच्चे को केवल पेट भरने के लिए नहीं भोजन देना है बल्कि उसके भोजन में अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। अगर हम बहुत कठिन शब्दों में उसे यह पोषण समझाएंगे तो शायद वह कुछ बातें समझे और कुछ बातें भूल जाए, लेकिन अगर हम उसे अपनी भाषा में उसके घर के उदाहरण से समझाएं, आप बच्चे की थाली में दाल रोटी चावल के साथ सब्जी फल और अन्य उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल कीजिए तो बात बहुत आसानी से समझ में आएगी।
0: बिल्कुल, जैसा कि मैम आपने बताया कि किस तरीके से हमें अपनी भाषा में ही बच्चों को इन सारी चीजों के बारे में बताना है, यानी कि भाषा केवल जानकारी पहुंचाने का माध्यम नहीं है। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि क्या स्थानीय भाषा में समझाने से लोगों को जल्दी समझ में आता है।
1: हाँ निश्चित रूप से। एक बहुत सामान्य उदाहरण ले लेते हैं। अगर हम किसी माँ से कहें कि आप बच्चे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर डाइट दे तो हो सकता है वह सोचने लगे कि यह बहुत कोई महंगी चीज होगी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अगर हम उसी बात को अगर सरल भाषा में कहें कि बच्चे की थाली में अलग अलग रंग की सब्जियां, दालें मौसमी फल और घर में उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल करें तो यह बात तुरंत समझ में आ जाएगी। यही मातृभाषा की ताकत है, कठिन जानकारी को सरल बनाकर जीवन से जोड़ देना।
0: जी हाँ मैम आपने सही कहा, यही हम देखते हैं कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पोषण जागरूकता बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में पोषण को लेकर जागरूकता की कमी देखी जाती है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है।
1: सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जागरूकता केवल भाषण देने से नहीं आएगी बल्कि लोगों से संवाद करने से आएगी। ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम किसी परिवार से जाकर यह कहें कि आप महंगे खाद्य पदार्थ खरीद कर बच्चों को खिलाइए तो यह व्यवहारिक सलाह नहीं होगी। इसके बजाय हमें यह देखना चाहिए कि वहाँ स्थानीय रूप से क्या उपलब्ध है और उसी से पौष्टिक भोजन की जानकारी देनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: उदाहरण के लिए घर में उपलब्ध दालें अनाज हरी सब्जियां मौसमी फल दूध आदि को भोजन में किस तरह शामिल किया जा सकता है यह समझाया जा सकता है।
0: बिल्कुल मैम आपने सही कहा, तो जैसा कि हम जान रहे हैं आपके माध्यम से कि किस तरीके से जब हम अपनी और सरल भाषा में कोई चीज किसी व्यक्ति को समझाते हैं तो किस तरीके से उसके मन को छू जाती है, यही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की इसमें क्या भूमिका है।
1: जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधे बच्चों और परिवारों से संपर्क में रहती है, यह हम सभी जानते हैं। मान लीजिए किसी माँ को यह चिंता है कि उसका बच्चा खाना ठीक से नहीं खाता।
0: बिल्कुल,
1: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उससे बातचीत करके यह समझ सकती है कि बच्चे की दिनचर्या कैसी है, परिवार में भोजन की आदतें कैसी है और उसे किस प्रकार से उसकी जानकारी की जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: वे केवल जानकारी देने का काम नहीं करती बल्कि परिवार और पोषण संबंधी सेवाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है और यदि यही जानकारी स्थानीय भाषा में प्यार और सम्मान से दी जाए तो उसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। यही अब बात आती है कि बच्चों को पोषण की शिक्षा किस उम्र से देनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम बच्चों को पालन पोषण में बहुत सारी चीजें देते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि कब हमें कौन सी चीज देने की जरूरत होती है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
1: जी, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अच्छी आदतों की नींव जो है वह बचपन में ही पड़ जाती है। एक छोटा बच्चा जब हाथ धोकर खाना सीखता है तो भोजन को बर्बाद न करना सीखता है, अलग अलग खाद्य पदार्थों को पहचानता है, वहीं से उसकी पोषण शिक्षा शुरू हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: बाद में वह उसे समझाया जा सकता है कि शरीर को अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत क्यों होती है। हम इसे बहुत ही सरल तरीके से भी सिखा सकते हैं। देखो, तुम्हारी थाली में जितने रंग होंगे उतनी ही सुंदर और विविध तुम्हारी थाली होगी। इस तरीके से हम बच्चों को बचपन से ही यह सब सिखा सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आप बता रही हैं कि बचपन से ही बच्चों के अंदर हमें इन सारी चीजों को डालने की जरूरत है। रंग बिरंगी हमारी पोषण की थाली, विविधता होनी चाहिए, ताकि बचपन से जब बच्चे इन्हें देखते खाते आएंगे तो आगे चलकर वो किसी भी चीज को खाने से मना नहीं कर सकते। नहीं क्या कहानियां और खेल के माध्यम से भी पोषण सिखाया जा सकता है?
1: हाँ अंजलि जी, क्योंकि आप और मैं, हम सभी जानते हैं कि कहानियां और खेल बच्चों को बेहद पसंद होते हैं। और अगर हम किसी बच्चे से कहें चलो हरी सब्जी खाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छी है, तो बच्चा मुंह बना लेगा।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अगर हम कहें कि आज तुम्हारी थाली में पालक आया है, जानते हो यह शरीर का कौन सा दोस्त है, अब बच्चा उत्सुक होगा। हम खाद्य पदार्थों को पात्र बनाकर कहानी बना सकते हैं, जैसे कि दाल को शरीर की ताकत का दोस्त, फल सब्जियों को रंग बिरंगे साथी और पानी को शरीर का जरूरी साथी बनाकर। इस तरह से खेल बनाया जा सकता है, जैसे कि हम बच्चों को क्या करें कि खाद्य पदार्थों के चित्र दे दें और बोले चलो आज मिलकर एक संतुलित थाली सजाते हैं। और जब शिक्षा खेल बन जाती है तो बच्चा उसे बोझ नहीं समझता।
0: जी हाँ, यही अब जानना चाहूंगी मैम मैं आपके माध्यम से कि परिवार में माता पिता की इन सारी चीजों को लेकर क्या जिम्मेदारी बनती है।

0: नहीं भाषण देना, हमें बच्चों को धैर्य के साथ नए खाद्य पदार्थों से परिचित कराना और परिवार में स्वस्थ भोजन का माहौल बनाना अधिक उपयोगी होगा।
1: बिल्कुल, तो क्या मैम गलत धारणाएं पोषण में बाधा बन सकती है?
0: हाँ अंजलि जी, बन सकती है। हमारे समाज में कई बातें पीढ़ियों से चली आ रही है, इनमें से कुछ परंपराएं उपयोगी हो सकती है, लेकिन हर धारणा वैज्ञानिक रूप से सही हो यह जरूरी तो नहीं। उदाहरण के लिए किसी खाद्य पदार्थ को बिना उचित कारण पूरी तरह छोड़ देना या बीमारी के समय जरूरी भोजन से भी बच्चों को दूर रखना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और हमें यह वैज्ञानिक तरीके से भी सोच कर उस बात का निर्णय लेना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें उन धारणाओं का मजाक उड़ाना चाहिए, पर हाँ यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि जागरूकता का मतलब केवल सही बात बताना नहीं बल्कि गलत बात को सम्मान पूर्वक सही करना भी है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी से हमें अवगत करवा रही हैं, पोषण माह को लेकर आप क्या संदेश हमारे श्रोता साथियों को देना चाहेंगी?
0: मेरे विचार से इसका सबसे बड़ा संदेश यही होगा कि पोषण केवल किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है अंजलि जी। हाँ यह हम सबकी जिम्मेदारी है, जैसे कि माँ बाप, परिवार, विद्यालय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, समाज, सभी की भूमिका है इसमें।
1: बिल्कुल,
0: और हमें यह भी समझना चाहिए कि पोषण केवल पेट भरने का नाम नहीं है, उसका संबंध सीधा हमारे शरीर के विकास से है और हमारी कार्य क्षमता और हमारे स्वस्थ भविष्य से है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए यह पोषण माह हमें यह याद दिलाता है कि हमें केवल एक महीने नहीं बल्कि हर दिन अपनी थाली और अपनी आदतों के प्रति सजग रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आप एक टीचर भी हैं और आप बच्चों के अंदर कई सारी ऐसी चीजें स्कूल में रहकर देखती होंगी और आपको लगता भी होगा कि ये चीज में बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसको लेकर आप अभिभावकों को क्या सलाह देना चाहेंगी?
0: मैं अभिभावकों से कहना चाहती हूँ कि बच्चे के लिए सबसे बड़ा उपहार केवल अच्छी शिक्षा या अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। इसलिए बच्चों के भोजन पर ध्यान दें, घर में उपलब्ध विविध खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करने की कोशिश करें, और सबसे बड़ी बात मौसमी और खाद्य पदार्थों को महत्व दें, और जब घर में भोजन कर रहे हो तब घर का वातावरण सकारात्मक रखें, शांत रखें। इससे क्या है, बच्चों के स्वास्थ्य उनके विकास पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आज मैम कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें रही है कि किस तरीके से हम पोषण को लेकर बच्चों को अपनी मातृभाषा में ढेर सारी जानकारी सरल भाषा में किस तरीके से समझा सकते हैं, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि पोषण को लेकर जो हम स्तनपान सप्ताह भी मनाते हैं, पोषण माह पूरा मना रहे हैं, ये दिवस हमें मनाने की जरूरत ही ना पड़े, लोग स्वतः ही इसको लेकर जागरूक हो जाएं।
0: जी जरूर, मैं अपने सभी श्रोता साथियों से ये कहना चाहती हूँ कि पोषण की शुरुआत किसी बड़े अभियान से नहीं हमें अपने घर से करनी होती है। इसकी शुरुआत हमारी रसोई से होती है और सबसे बड़ी बात हमारी थाली से और हमारी सोच से। अपने बच्चों को केवल यह मत समझाइए कि उन्हें क्या खाना है, उन्हें यह भी समझाइए कि क्यों खाना है।
1: बिल्कुल,
0: और यह समझाते समय उनकी भाषा बोलिए, उनके उदाहरण दीजिए, उनकी दुनिया से जुड़िए, कहानियों के माध्यम से समझाइए, क्योंकि जब स्वास्थ्य की बात हमारी अपनी भाषा में कही जाती है तो वह केवल जानकारी नहीं रहती, वह समझ बनती है, और जब यह समझ आदत बन जाती है तो वही आदत एक स्वस्थ परिवार, एक स्वस्थ समाज की नींव रखती है। तो आइए इस पोषण माह में हम एक छोटा सा संकल्प ले, सही जानकारी पाएंगे, अपनी भाषा में समझेंगे और अपने परिवार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि स्वस्थ बचपन, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज, इसी से तो बनेगा हमारा स्वस्थ भविष्य।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आपने बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम में बहुत ही सरल तरीके से बताई है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी श्रोताओं से यही आग्रह है कि स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और पोषण की जानकारी अपने परिवार तक जरूर पहुंचाइए।
1: श्रोता साथियों, आज की बातचीत से एक बात बिल्कुल

इंसाफ है। स्वास्थ्य और पोषण की सही जानकारी तभी ज्यादा असरदार बनती है जब वह हमारी समझ की भाषा में हम तक पहुँचे। हमारी मातृभाषा केवल बातचीत का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे अनुभव, हमारी संस्कृति और हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। इसलिए जब पोषण की बात हमारी अपनी भाषा में होती है तो उसे समझना, याद रखना और परिवार तक पहुंचाना आसान हो जाता है। हम ये कोशिश करें श्रोता साथियों कि हमारे घर का कोई भी सदस्य केवल इसलिए सही स्वास्थ्य जानकारी से वंचित न रहे कि उसे कठिन भाषा में समझाया गया। सरल भाषा में सही जानकारी से सही समझ और सही समझ से स्वस्थ परिवार। इसी संदेश के साथ अब हम कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि घड़ी की जो टिक टिक करती हुई सुई है वो हमें अब इशारा कर रही है कि अब हमारे कार्यक्रम से जाने का समय भी हो गया है और श्रोता साथियों के एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन का समय है। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: साथियों, बप्पा की सीख हो तो बुद्धि और विवेक की राह मिले, हिंदी की शक्ति हो तो अपनी बात को पहचान मिले, नई सोच के साथ युवा आगे बढ़े, नई मंजिलों के सपने देखे, लेकिन अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को कभी न छोड़ें, क्योंकि दुनिया हमें हमारी सफलता से पहचान सकती है, लेकिन हमारी असली पहचान हमारी जड़ों से बनती है। आओ बप्पा से सीखे आगे बढ़ने का हुनर और हिंदी से पाए अपनी आवाज को पहचान देने का सामर्थ्य।
1: जी हाँ साथियों, आप सभी को वागर रेडियो परिवार की ओर से गणेश चतुर्थी और हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। जैसा कि किससे पहले आपको कुछ चंद पंक्तियां सुनाई थी, उन चंद पंक्तियों से आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस विषय को लेकर बातचीत करने वाले हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं बप्पा की भक्ति से हिंदी की शक्ति तक युवा अपनी पहचान किस तरह से जोड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: यानी कि कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि गणेश उत्सव हो या हिंदी दिवस, दोनों ही हमें अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर देते हैं। एक तरफ बप्पा हमें बुद्धि, विवेक और नई शुरुआत का संदेश देते हैं, तो दूसरी तरफ हिंदी हमें अपनी भावनाओं, विचारों और संस्कृति को अपनी सहज भाषा में व्यक्त करने की ताकत देते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम कह सकते हैं हमारे श्रोता साथियों से कि गणेश चतुर्थी हमें भगवान गणेश के माध्यम से बुद्धि, विवेक, धैर्य, विनम्रता और नई शुरुआत का संदेश देती है।
1: बिल्कुल।
0: वहीं श्रोता साथियों, हिंदी हमें अपनी बात, अपने विचार, अपनी भावनाओं और अपनी संस्कृति को व्यक्त करने की शक्ति देती है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दे पहले।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं बप्पा की भक्ति से हिंदी की शक्ति तक युवा अपनी पहचान किस तरह से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो कशिश, हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जिस भाषा में हम अपने मन की बात कह पाए वही भाषा हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है।
1: बिल्कुल।
0: भाषा केवल शब्द नहीं, हमारी सोच, संस्कार और पहचान होती है। इसी के साथ साथियों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि नई राह पर बढ़ना है तो बुद्धि का साथ चाहिए, अपनी पहचान बनानी है तो अपनी जड़ों को एहसास चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: कशिश, गणेश चतुर्थी हमें भगवान गणेश के माध्यम से बुद्धि, विवेक, धैर्य, विनम्रता और नई शुरुआत करने का संदेश देते हैं। जैसा कि गीत से पहले हमने बताया था, वही हिंदी हमें अपनी बात, अपने विचार और अपनी भावनाओं को, अपनी संस्कृति को व्यक्त करने की शक्ति देते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं साथियों कि आज का युवा तेजी से बदलती दुनिया का हिस्सा है।
0: बिल्कुल।
1: मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, नई तकनीक, नए करियर और नई भाषाएं उनके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं जागृति जी। लेकिन इन सभी चीजों के बीच एक सवाल बहुत जरूरी है कि क्या हम आगे बढ़ते हुए अपनी जड़ों को भी साथ लेकर चल रहे हैं। श्रोता साथियों, बप्पा की जो पहली सीख है वो ये है बुद्धि और विवेक।
0: बिल्कुल।
1: यानी कि भगवान गणेश को बुद्धि और विवेक का प्रतीक माना जाता है और युवाओं के जीवन में ये सीख काफी महत्वपूर्ण है जागृति जी। आज हमारे सामने ढेर सारे विकल्प हैं, इंटरनेट पर हर तरह की जानकारी उपलब्ध है।
0: बिल्कुल।
1: सोशल मीडिया पर हर दिन नई चीजें देखने को मिलती है, लेकिन हर जानकारी सही हो ये भी तो जरूरी नहीं है साथियों। ऐसे समय में युवा को केवल जानकारी नहीं बल्कि सही और गलत के बीच अंतर समझने की बुद्धि भी होनी चाहिए।
0: जी हाँ,
1: यही बप्पा की सीख है, सोचिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए।
0: बिल्कुल।
1: और यही बात हमारी भाषा से भी जोड़ती है जागृति जी। जब हम अपनी भाषा में किसी विचार को समझते हैं तो कई बार उसे अपने अनुभव और भावनाओं से जोड़ना आसान हमारे लिए हो जाता है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि गणेश उत्सव अपने साथ उत्साह और नई शुरुआत का संदेश लेकर आता है। युवा जीवन में भी हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: अगर परीक्षा में सफलता नहीं मिली है श्रोताओं, तो फिर से शुरुआत कीजिए। अगर किसी काम में असफलता मिली है तो उससे सीखिए। अगर कोई रास्ता बंद हो गया है तो नया रास्ता आप जरूर खोजिए।
1: बिल्कुल।
0: असफलता अंत नहीं है, सीखने का एक अवसर हो सकती है। और यही कारण है कशिश की युवा को अपनी पहचान बनाते समय भी डरना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, अगर आपको हिंदी में लिखना पसंद है तो आप जरूर लिखिए। अगर आपको हिंदी में बोलना पसंद है तो आप जरूर बोलिए। अगर आपको अपनी स्थानीय बोली में कहानी सुनाना पसंद है तो जरूर सुनाइए। दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी विशेषता को पहचानना ही असली आत्मविश्वास है।
1: जी हाँ जागृति जी, साथ ही बताना चाहेंगे युवा साथियों को कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं बल्कि पहचान की आवाज है।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, हमारे लिए भाषा केवल बातचीत का माध्यम नहीं है। भाषा के साथ हमारी यादें जुड़ी हुई होती है, हमारे रिश्ते जुड़ते हैं, हमारी संस्कृति जुड़ी हुई होती है, साथ ही हमारी कहानियाँ और अनुभव भी जुड़े होते हैं। बचपन में दोस्तों सुनी दादी नानी की कहानियाँ, घरों में बुजुर्गों की बातचीत, त्योहारों के गीत, गांव की कहावतें, इन सब में हमारी संस्कृति की झलक मिलती है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए हिंदी को अपनाना केवल हिंदी बोलना नहीं जागृति जी, हिंदी के माध्यम से अपनी कहानी को पहचान देना भी है।
0: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है, हम हमारे श्रोता साथियों को बता रहे हैं कि बप्पा की सीख से हिंदी की शक्ति तक युवा अपनी पहचान से कैसे जुड़ सकते हैं।

0: बातें निरंतर आगे भी हमारे श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल, तो युवा साथियों आइए सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातें बहुत अच्छी चल रही थी बप्पा की सीख और हिंदी की शक्ति को लेकर, यहीं आपसे बताना चाहेंगे श्रोता साथियों कि डिजिटल दुनिया में भी हिंदी की शक्ति कहीं हद तक मायने रखती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जागृति जी आज का युवा डिजिटल दुनिया में बहुत सक्रिय है। हम अलग अलग एप्स के माध्यम से श्रोता साथियों अपनी बात को पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं।
1: जी हाँ।
0: तो ऐसे में क्यों ना साथियों इस डिजिटल शक्ति का इस्तेमाल हम अपनी भाषा और संस्कृति के लिए भी करें। जागृति जी, कोई युवा अपने गांव के किसी बुजुर्ग का अनुभव रिकॉर्ड कर सकता है, कोई स्थानीय लोकगीतों पर वीडियो बना सकता है, कोई हिंदी में शिक्षा से जुड़ी जानकारी साझा कर सकता है, तो कोई अपनी बोली और लोक कथाओं को डिजिटल रूप में सुरक्षित भी कर सकता है।
1: जी हाँ।
0: इस तरह युवा साथियों केवल कंटेंट नहीं बनेगा बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को हम आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचा पाएंगे।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हमारे गांव और क्षेत्रों के स्थानीय बोलियों में हमारी मिट्टी की खुशबू होती है। कई बार युवा अपने स्थानीय बोली बोलने में झिझक महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि शहर या सोशल मीडिया की भाषा ही आधुनिकता की पहचान है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए याद रखिए आधुनिक होना अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं है। श्रोताओं, आप नई तकनीक सीख सकते हैं और अपनी बोली भी बोल सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आप अंग्रेजी भी सीख सकते हैं और हिंदी में अपनी बात रख भी सकते हैं। आप दुनिया के साथ जुड़ सकते हैं और अपने गांव की संस्कृति को भी सम्मान दे सकते हैं। जड़ें मजबूत होगी कशिश, तभी हमारी पहचान भी मजबूत होगी।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही अगर बात करें बप्पा की सीख और युवा पहचान की, कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो दोस्तों बप्पा की सीख हमें केवल पूजा तक सीमित नहीं रखती, उसमें जीवन के कई संदेश भी छिपे हुए हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि बुद्धि जो है वो हमें सही निर्णय लेना सिखाती है, विवेक हमें सही गलत की पहचान करना सिखाता है, धैर्य हमें मुश्किल समय में टिके रहना सिखाती है जागृति जी, और विनम्रता हमें सफलता के बाद भी जमीन से जुड़े रहना सिखाती है।
1: जी हाँ।
0: और बात करें नई शुरुआत की, तो साथियों नई शुरुआत हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में अगर युवा साथी इन मूल्यों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं और अपनी भाषा संस्कृति और समाज से जुड़े रहते हैं जागृति जी, तो उनकी पहचान केवल सोशल मीडिया की पहचान नहीं रहेगी, बल्कि वह एक जिम्मेदार और जागरूक युवा की पहचान बन जाएगी।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हमारे युवा साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि साथियों आप अपनी भाषा में बात करते वक्त झिझक मत महसूस करिए। हिंदी बोलना या लिखना पुराना विचार नहीं है, ये अपनी बात को सहजता से व्यक्त करने का माध्यम है।
0: बिल्कुल,
1: अपने क्षेत्र की बोली में हमारी संस्कृति और इतिहास की कई कहानियां छिपी होती है, इसीलिए श्रोता साथियों आप अपने स्थानीय बोली को सम्मान दें, बुजुर्गों के अनुभव को सुने, बुजुर्गों की जीवन की कहानियां रिकॉर्ड करें और उनसे सीखें, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को बता पाएं। हिंदी में वीडियो, पॉडकास्ट, ब्लॉग, कहानियां और उपयोगी जानकारी भी तैयार करें, ताकि आप हिंदी को डिजिटल दुनिया से जोड़ सकते हैं। हिंदी से जुड़ना दूसरी भाषाओं से दूरी बनाना नहीं है दोस्तों, जितनी भाषाएं हम सीखेंगे उतने नए संसार हम समझ पाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: गणेश चतुर्थी की बात करें तो गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार को केवल उत्सव के रूप में नहीं लेना है, बल्कि उसके बारे में, उसके मूल उद्देश्य के बारे में हमें समझना है और समझाना भी है। साथ ही अपनी संस्कृति को हमें जानना है, क्योंकि लोकगीत, लोक कला, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय इतिहास के बारे में जानने की हमें कोशिश करनी है, जो आज कहीं लुप्त हो चुकी है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही सोशल मीडिया पर देखकर हर बात को सच न माने, बप्पा की सीख के अनुसार बुद्धि और विवेक से जरूर आप निर्णय लीजिए।
0: जी हाँ।
1: रेडियो, पत्रकारिता, लेखन, अनुवाद, डिजिटल कंटेंट और पॉडकास्ट जैसे क्षेत्रों में भाषा एक उपयोगी कौशल बन सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है श्रोता साथियों कि दूसरों की पहचान की नकल करने के बजाय अपनी प्रतिभा, अपनी भाषा और अपने अनुभव और अपने सपनों को आप जरूर पहचानिए।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो युवा साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि अपनी पहचान से जुड़ने के लिए कोई बड़ा काम करने की आपको जरूरत नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: आज घर में अपने किसी बुजुर्ग से उनकी बचपन की कहानी आप पूछिए, आज अपनी स्थानीय बोली का कोई शब्द लिखिए और उसका अर्थ जानिए, आज हिंदी में कोई अच्छी किताब पढ़िए साथियों, आज सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा साझा कीजिए जिसमें आपकी संस्कृति, आपका समाज या आपकी सकारात्मक सोच दिखाई दे।
1: बिल्कुल,
0: और आज अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या मैं आधुनिक दुनिया के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी जड़ों को कितना साथ लेकर चल रहा हूँ। शायद इस सवाल का जवाब ही आपकी पहचान की शुरुआत बन जाए।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, तो हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे, कि श्रोता साथियों, आज की बातों का सार यही है कि बप्पा हमें बुद्धि और विवेक से आगे बढ़ना सिखाते हैं और हिंदी हमें अपनी बात अपनी पहचान के साथ कहने की शक्ति देती है।
0: बिल्कुल,
1: हमें दुनिया से जुड़ना है लेकिन अपनी जड़ों से कट कर नहीं। हमें नई तकनीक तो अपनानी है लेकिन अपनी संस्कृति को भी भूलना नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: हमें नई भाषाएं सीखनी है कशिश, लेकिन हमें अपनी भाषा को कम समझना भी नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: और हमें सफल होना है लेकिन अपनी पहचान खोकर सफल नहीं होना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: याद रखिए श्रोता साथियों, जिस युवा को अपनी जड़ों का पता होता है वही नई ऊंचाइयों पर पहुंचकर अपनी पहचान नहीं खोता। इसी सोच के साथ श्रोता साथियों, बप्पा से बुद्धि विवेक और धैर्य की सीख लें और हिंदी से अपनी आवाज और अपनी पहचान को मजबूत करें।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इन्हीं बातों के साथ अब जैसा कि कार्यक्रम में युवा साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी है और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे युवाओं को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: बिल्कुल।
0: आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो युवा साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े में देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
2: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, ने पोषण भी पक्कू। बारतेनु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
5: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी जिम्मेदारी को लेकर।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, किसी इंसान की पहचान केवल उसके नाम से नहीं होती, उसकी असली पहचान उसकी भाषा, उसके संस्कार और उसकी संस्कृति से होती है।
0: बिल्कुल,
1: जिस भाषा में हमने पहली बार माँ को पुकारा, जिस संस्कृति ने हमें बड़ों का सम्मान करना और छोटों से प्रेम करना सिखाया, वो केवल हमारी विरासत नहीं हमारी जिम्मेदारी भी है।
0: बिल्कुल,
1: अगर हम अपनी भाषा और संस्कृति को संभालेंगे श्रोताओं, तभी आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ पाएंगी।
0: बिल्कुल, तो आज जागृति जी हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहने वाली हैं। लेकिन क्यों ना कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी जिम्मेदारी को लेकर।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, किसी भी व्यक्ति की पहचान केवल उसके नाम, पहनावे या स्थान से नहीं होती। उसकी असली पहचान उसकी भाषा, संस्कृति, संस्कार और जीवन मूल्यों से होती है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, जिस भाषा में हम पहली बार अपने माता पिता को पुकारते हैं, जिस बोली में दादी नानी हमें कहानियां सुनाती है, जिस संस्कृति में हम त्योहार मनाते हैं और जिस परंपरा से हम मिलजुल कर रहने की सीख मिलती है, वही हमारी जड़ों की पहचान होती है। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। तकनीक ने देशों और समाज की दूरियों को कम कर दिया है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमें दुनिया के किसी भी कोने से जोड़ दिया है। यह बदलाव जागृति जी हमारे लिए अवसर लेकर आया है, लेकिन इसके साथ ही एक चुनौती भी है।
0: बिल्कुल।
1: कहीं आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी भाषा और संस्कृति को तो पीछे न छोड़ दें, क्योंकि श्रोता साथियों, अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़ना पिछड़ापन नहीं है, बल्कि अपने जड़ों को समझते हुए नई दुनिया को अपनाना ही सच्ची प्रगति है। हमें दूसरी भाषाएं सीखनी चाहिए, नई तकनीक अपनानी चाहिए और दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा, अपनी लोक परंपराओं और अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भूलना नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि भाषा हमारे विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। भाषा के माध्यम से हम अपने अनुभव दूसरों तक पहुंचाते हैं, लेकिन भाषा की भूमिका इससे कहीं बड़ी है।
1: जी हाँ।
0: किसी समाज की भाषा में उसकी जीवन शैली, इतिहास, लोक ज्ञान, परंपराएं और भावना छिपी होती है। मातृभाषा वो भाषा है श्रोताओं, जिसे बच्चा अपने आसपास के वातावरण से सहज रूप से सीखता है।
1: बिल्कुल।
0: माँ की लूरी, परिवार की बातचीत, गांव की कहावतें और बुजुर्गों की सीख, अंजलि, ये सब भाषा के माध्यम से ही अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। इसीलिए अपनी भाषा को सम्मान देना श्रोताओं, अपने इतिहास और अपनी पहचान को सम्मान देना है।
1: जी हाँ।
0: आज हम देखते हैं कि कई युवा पढ़ाई और रोजगार के लिए दूसरी भाषाएं सीख रहे हैं, अंजलि, ये अच्छी बात है। अंग्रेजी अन्य भाषाओं का ज्ञान हमें व्यापक अवसर देता है श्रोताओं, लेकिन दूसरी भाषा सीखने के लिए अपनी भाषा को भूल जाना आवश्यक नहीं है। हम कई भाषाएं सीख सकते हैं और फिर अपनी मातृभाषा से गहराई से जुड़ सकते हैं। दूसरी भाषा सीखना विकास है, लेकिन अपनी भाषा भूल जाना अपनी जड़ों से दूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात आती है, संस्कृति हमारी पहचान है। जी हाँ दोस्तों, संस्कृति किसी एक दिन या किसी एक त्योहार का नाम नहीं है। संस्कृति हमारे पूरे जीवन का हिस्सा है। हमारा खान पान, पहनावा, लोकगीत, लोक नृत्य, त्योहार, मेले, कला, साहित्य, पारंपरिक ज्ञान, परिवार के संस्कार और समाज में एक दूसरे के प्रति, इन सब का मिला जुला रूप संस्कृति कहलाता है। हमारे गाँव में आज भी कई ऐसी परंपराएं हैं जागृति जी, जो लोगों को आपस में जोड़ती है।
0: बिल्कुल।
1: त्योहारों पर एक दूसरे के घर जाना, सामूहिक रूप से आयोजन करना, जरूरत के समय पड़ोसी की मदद करना और बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी सामाजिक संस्कृति की खूबसूरत मिसालें हैं। राजस्थान जैसे प्रदेश की बात करें तो यहाँ की लोक भाषाएं, लोकगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प, पारंपरिक खान पान और लोक कथाएं इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह भारत के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग पहचान है, अलग अलग भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं, वे सभी मिलकर भारत की विविधता को सुंदर बनाती हैं।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान ये है कि वो हमें केवल परंपराएं नहीं देती, बल्कि जीवन जीने के मूल्य भी सिखाती है। हमारी अच्छी सांस्कृतिक परंपराएं हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाती है, जैसा कि अभी आपने बताया था, छोटों से प्रेम करना, अतिथि का सम्मान करना, प्रकृति की रक्षा करना, मिलजुल कर रहना, जरूरतमंद की सहायता करना, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना, ये सारे मूल्य वो हमें सिखाती है। इसीलिए संस्कृति को केवल पुराने रीति रिवाजों के रूप में देखना उचित नहीं है श्रोताओं, हमें उसकी आत्मा को समझना होगा। कई बार ये सवाल उठता है अंजलि कि आधुनिक युग में पुरानी संस्कृति की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर है श्रोताओं, आधुनिकता और संस्कृति एक दूसरे के विरोधी नहीं है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम स्मार्टफोन का उपयोग कर सकते हैं और अपनी मातृभाषा में भी बात कर सकते हैं। हम आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही अपनी लोक कथाओं को भी पढ़ सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हम नई तकनीक सीख सकते हैं और अपने पारंपरिक ज्ञान का सम्मान भी कर सकते हैं। समय के साथ बदलाव जरूरी है श्रोता साथियों, समाज में ऐसी परंपराएं भी हो सकती हैं जिनमें सुधार किया जाना चाहिए। इसलिए संस्कृति को आंख बंद करके अपनाना नहीं, बल्कि समझकर आगे बढ़ाना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: जो परंपराएं मानवता, समानता, सहयोग, प्रकृति, सम्मान और प्रेम का संदेश देती है, उन्हें मजबूत करना चाहिए। जो बातें भेदभाव या अन्याय को बढ़ावा देती है, उनमें सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। यही जीवन संस्कृति की पहचान है।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं अपनी भाषा अपनी संस्कृति को लेकर, ये बातें निरंतर आगे भी बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत कर रहे हैं, यही बात करें युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है अपनी भाषा को लेकर, तो श्रोता साथियों, आज के युवा संस्कृति के सबसे बड़े महत्वपूर्ण वाहक हैं। युवा जिस भाषा में बात करेंगे, जिस तरह की सामग्री सोशल मीडिया पर साझा करेंगे और जिन परंपराओं

0: अगर परिवार की भूमिका को लेकर हमारे श्रोता साथियों से हम बात करें तो साथियों, भाषा और संस्कृति की पहली पाठशाला परिवार होता है। बच्चा सबसे पहले परिवार से भाषा सीखता है और परिवार के व्यवहार से संस्कार सीखता है। अगर घर में बच्चे से अपनी मातृभाषा में बातचीत होती है, उसे परिवार की कहानियां सुनाई जाती है और त्योहार के पीछे छिपे संदेश बताए जाएंगे, तो वो अपनी संस्कृति से स्वाभाविक रूप से जुड़ पाएगा।
1: जी हाँ।
0: माता पिता और दादा दादी बच्चों को अपने बचपन की कहानियां, गांव की परंपराएं और परिवार की पुरानी यादें बता सकते हैं। इससे बच्चों को अपने इतिहास और अपनी जड़ों को समझने का अवसर मिलता है। हमें ये भी समझना होगा श्रोताओं कि बच्चों पर संस्कृति थोपने की बजाय उन्हें उसके पीछे का अर्थ समझाना और अधिक प्रभावी होता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हमारे बुजुर्ग केवल परिवार के वरिष्ठ सदस्य नहीं है, वे अनुभव और लोक ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
0: बिल्कुल,
1: उनके पास गांव की पुरानी कहानियां, लोकगीत, कहावतें, पारंपरिक खेती का ज्ञान, मौसम की समझ और सामाजिक जीवन के अनेक अनुभव होते हैं। आज जब श्रोता साथियों बहुत सी चीजें डिजिटल रूप में सुरक्षित की जा रही है, तब हमें अपने बुजुर्गों के अनुभवों को भी सुरक्षित करना चाहिए। एक युवा अपने दादा दादी या गांव के किसी बुजुर्ग से बातचीत करके उनकी कहानी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनसे स्थानीय इतिहास पूछ सकते हैं और पुराने गीतों को और कहावतों का अर्थ जान सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यह छोटा सा प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी विरासत बन सकता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हमारी संस्कृति को जीवित रखने में स्थानीय कलाकार और कारीगरों की बड़ी भूमिका होती है। लोक गायक, लोक नर्तक, हस्तशिल्पकार, बुनकर, मिट्टी के कारीगर और पारंपरिक कला से जुड़े लोग हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक हैं। यदि हम उनकी कला को जागृति से महत्व देंगे, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करेंगे और नई पीढ़ी को इन कलाओं से परिचित कराएंगे, तो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं आगे बढ़ेंगी।
0: बिल्कुल,
1: सिर्फ किसी मेले में लोक कला देखकर खुश होना पर्याप्त नहीं है, उसके पीछे मेहनत करने वाले कलाकार का सम्मान और सहयोग भी जरूरी है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि गांव में संस्कृति जीवन का हिस्सा होती है। खेत, त्योहार, मेले, लोकगीत, सामूहिक श्रम और सामाजिक सहयोग, इन सब का गहरा संबंध ग्रामीण जीवन से है। गांव की मजबूत पहचान तभी बनी रह सकती है जब वहाँ के लोग अपनी भाषा, स्थानीय ज्ञान और सामाजिक परंपराओं को सम्मान देंगे। लेकिन गांव की संस्कृति को बचाने का अर्थ ये नहीं है श्रोता साथियों कि गांव विकास से दूर रहे। गांव में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, डिजिटल तकनीक, रोजगार और आधुनिक कृषि पद्धतियां भी जरूरी है। हमें ऐसा गांव बनाना है जो आधुनिक भी हो और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ भी हो।
1: जी हाँ।
0: साथ ही आज मोबाइल और इंटरनेट हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, ये हम सभी जानते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ ही मिनटों में कोई विचार हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। इसका सकारात्मक उपयोग करके हम अपनी संस्कृति को नई पहचान दे सकते हैं अंजलि। युवा अपनी मातृभाषा में वीडियो बना सकते हैं, स्थानीय इतिहास बता सकते हैं, लोकगीत साझा कर सकते हैं, पारंपरिक व्यंजनों की जानकारी दे सकते हैं और अपने क्षेत्र की कला को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इससे स्थानीय संस्कृति केवल गांव या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि व्यापक स्तर पर पहचान बना सकती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, अपनी भाषा का सम्मान करने के लिए हमें बड़े अभियान की आवश्यकता नहीं है, छोटे कदम ही पर्याप्त है। घर में मातृभाषा में बातचीत करें, बच्चों को स्थानीय कहानियां सुनाएं, मातृभाषा में पुस्तकें पढ़ें, स्थानीय लोक गीतों और साहित्य को प्रोत्साहित करें, अपनी भाषा में लिखने और बोलने में संकोच न करें, डिजिटल माध्यमों पर अपनी भाषा के अच्छे कंटेंट को बढ़ावा दें। भाषा तभी जीवित रहती है श्रोता साथियों जब इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन में होता है। श्रोता साथियों, हम अक्सर कहते हैं कि सरकार को संस्कृति बचाने के लिए काम करना चाहिए। सरकार और संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन संस्कृति की रक्षा केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है। संस्कृति की पहली जिम्मेदारी समाज की और हर व्यक्ति की है। अगर हम अपनी भाषा बोलेंगे नहीं, अपने लोकगीत सुनेंगे नहीं, स्थानीय कलाकारों का सम्मान नहीं करेंगे और बच्चों को अपनी परंपराओं से परिचित नहीं कराएंगे, तो केवल किताबों में संस्कृति को सुरक्षित रखना पर्याप्त नहीं होगा।
0: बिल्कुल,
1: हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि भारतीय संस्कृति में प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना लंबे समय से दिखाई देती है। हम देखते हैं कि अगर हम सच में अपनी भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं श्रोता साथियों, तो हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। घर में ही अपनी मातृभाषा का सम्मान करना है, बच्चों को अपनी लोक कथाएं परंपरा बतानी है, स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को प्रोत्साहित करना है, अपनी भाषा में पढ़ने और लिखने की आदत विकसित करनी है, साथ ही डिजिटल माध्यमों पर सकारात्मक सांस्कृतिक सामग्री साझा करनी है, अच्छी परंपराओं को आगे बढ़ाना है और आवश्यक सुधार को स्वीकार करना है।
1: बिल्कुल,
0: अपनी संस्कृति के साथ साथ दूसरी संस्कृतियों का भी सम्मान करना है, प्रकृति और स्थानीय संसाधनों की रक्षा भी करनी है। ये छोटी छोटी बातें अगर हम हमारे जीवन में उतारेंगे तो हम अपनी भाषा को अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रख सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, हमें यह समझना होगा कि भाषा केवल शब्द नहीं, संस्कृति केवल

0: परंपरा नहीं और जिम्मेदारी केवल एक शब्द नहीं है, ये तीनों हमारी पहचान और हमारे भविष्य से जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल।
0: अगर भाषा जीवित रहेगी तो हमारी कहानियाँ जीवित रहेंगी, अगर संस्कृति जीवित रहेगी तो हमारी पहचान जीवित रहेगी, और अगर हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो ये विरासत आगे आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचेगी। हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है लेकिन अपनी जड़ों को छोड़कर नहीं, हमें आधुनिक बनना है लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं।
1: बिल्कुल।
0: हमें नई भाषा सीखनी है लेकिन अपनी मातृभाषा भूलकर नहीं। इसलिए श्रोता साथियों, आज के दिन हम सभी इस बात को माने कि अपनी भाषा को सम्मान देंगे, अपनी संस्कृति को समझेंगे और अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे, क्योंकि जड़ों से जुड़ा इंसान ही ऊंचाइयों तक मजबूती से पहुंच सकता है। अपनी भाषा हमारी आवाज, अपनी संस्कृति हमारी पहचान, और इसे आगे बढ़ाने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी।
1: जी हाँ, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब देख पा रहे हैं कि समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: विदा जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ।

0: नाम है क्या।
1: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
2: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्वर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को
2: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में और एक ऐसे विषय पर विशेष चर्चा के साथ में जो हमारे जीवन के हर पल से जुड़ा है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, खाना बनाने से लेकर शरीर को स्वस्थ रखने तक, बच्चों की देखभाल से लेकर खेती और पशुपालन तक, हर जगह पानी की जरूरत होती है। लेकिन साथियों, क्या केवल पानी मिल जाना ही काफी है? क्या हम जो पानी पी रहे हैं वह वास्तव में स्वच्छ और सुरक्षित है? क्योंकि कहा गया है कि जल है तो जीवन है, स्वच्छ जल है तो स्वस्थ जीवन है। आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है स्वस्थ पानी, अच्छे स्वास्थ्य की पहली जरूरत को लेकर।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं स्वच्छ पानी अच्छे स्वास्थ्य की पहली जरूरत को लेकर। अंजलि जी, हम देखते हैं कि पानी हमारे जीवन की जरूरी चीजों में से एक है। इंसान भोजन के बिना श्रोता साथियों कुछ समय तक रह सकता है, लेकिन पानी के बिना जीवन की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। हमारे शरीर का बड़ा हिस्सा पानी से बना है। शरीर के लगभग श्रोता साथियों हर काम है वो पानी की जरूरत से होते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, पानी केवल प्यास बुझाने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य की नींव भी है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम सभी जानते हैं कि हम भोजन के बिना कुछ समय के लिए रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना लंबे समय तक जीवित रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए पानी को केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं समझना है, बल्कि पानी हमारे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आधार है। लेकिन आज सबसे बड़ी चुनौती केवल पानी की कमी की नहीं, बल्कि स्वच्छ पानी की उपलब्धता भी है। कई बार हमें पानी देखने में बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन उसमें ऐसे कीटाणु और सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जिन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यही अदृश्य कीटाणु कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि साफ दिखने वाला हर पानी सुरक्षित हो यह जरूरी नहीं। जब पानी गंदा होता है, जब उसमें कीटाणु मिल जाते हैं, तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन सकता है। दूषित पानी पीने से हम देखते हैं कि कई बीमारियां होती है, जैसे कि दस्त, डायरिया, उल्टी, पेट दर्द, हैजा, टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारी, पेट में संक्रमण, बच्चों में कमजोरी और कुपोषण की समस्या। श्रोता साथियों, विशेष रूप से छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों पर दूषित पानी का असर जल्दी पड़ सकता है। गाँव में अक्सर बरसात के समय पानी के स्रोत गंदे हो जाते हैं। कुएं, हेडपंप के आसपास जमा गंदा पानी, खुले नाले और पशुओं की गंदगी पानी के स्रोत को दूषित कर सकती है।
0: जी हाँ।
1: अगर पानी पीने योग्य नहीं है, तो वह हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के बजाय बीमार कर सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे शरीर में पानी के कई महत्वपूर्ण काम होते हैं। जब पानी पीते हैं श्रोता साथियों, तो हमारे शरीर के अंदर जाकर अलग अलग अंगों तक पानी पहुंचता है। पानी शरीर का तापमान सामान्य रखने में मदद करता है। गर्मी के मौसम में पसीना निकलता है इससे, और शरीर को ठंडक रखने में भी इसकी भूमिका होती है। श्रोता साथियों, पानी भोजन को पचाने में मदद करता है। हमारे शरीर में भोजन को निगलने और पोषक तत्वों को सही जगह पहुंचाने में भी पानी की भूमिका होती है।
1: जी हाँ।
0: हम देखते हैं कि पानी शरीर में बेकार पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, और पसीने के माध्यम से श्रोता साथियों कई अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। पानी की कमी होने पर श्रोता साथियों शरीर में कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना और थकान जैसी परेशानियां हैं वो बढ़ सकती हैं। इसीलिए श्रोता साथियों, हमें पूरे दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना है।
1: बिल्कुल मनीषा, स्वच्छ पानी की शुरुआत हमारे अपने घर से होती है। हम छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर अपने परिवार को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। सबसे पहले जिस बर्तन में पानी रखा जाता है वह साफ होना चाहिए। पानी को खुले बर्तन में रखने से उसमें धूल, मक्खियां और अन्य गंदगी गिर सकती है। इसलिए पानी को हमेशा साफ बर्तन में रखें, संभव हो तो ढक्कन लगाकर रखें। पानी निकालने के लिए साफ गिलास और साफ डोंगे का इस्तेमाल करें। गंदे हाथ पानी के बर्तन में न डालें। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि पीने के पानी और अन्य कामों के पानी को अलग रखें। अक्सर हम पानी तो भर लेते हैं मनीषा, लेकिन उसके रख रखाव पर ध्यान नहीं देते। याद रखिए कि पानी स्रोत से साफ आया हो, लेकिन घर में गलत तरीके से रखा जाए तो वह दूषित हो सकता है। कई परिस्थितियों में पानी को उबालकर पीना एक अच्छा और सुरक्षित उपाय हो सकता है, विशेष रूप से जब पानी की गुणवत्ता पर संदेह हो, बरसात का मौसम हो, आसपास पानी से मिलने वाली बीमारियों की संभावना अधिक हो। तब पानी को अच्छी तरह उबालने से उसमें मौजूद कई हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो सकते हैं। हालांकि श्रोता साथियों, पानी को सुरक्षित बनाने का तरीका स्थानीय पानी के स्रोत और उसकी गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। इसलिए यदि किसी क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता को लेकर समस्या है, तो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग या जल विभाग की सलाह लेना भी जरूरी है। पानी को सुरक्षित बनाना केवल बीमारी होने के बाद की जिम्मेदारी नहीं है, बीमारी से बचाव पहले करना ही सबसे अच्छी समझदारी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं। तो ये बातें हमारे आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान पाए, यहीं बच्चों के लिए स्वच्छ पानी क्यों जरूरी है इसको लेकर बात करें, तो बच्चे हमारे परिवार का भविष्य है, लेकिन बच्चों का शरीर बड़ों की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है। गंदा पानी पीने से बच्चों को जल्दी पेट की समस्या हो सकती है। बार बार दस्त होने से बच्चों के शरीर में पानी और पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इससे बच्चा कमजोर महसूस कर सकता है, उसकी वृद्धि पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें सुरक्षित और स्वच्छ पानी मिले। पानी रखने वाला बर्तन साफ हो, बच्चों को खाने से पहले और शौचालय के बाद हाथ धोने की आदत हो, बोतल और गिलास नियमित रूप से साफ किए जाएं। बहुत छोटे बच्चों के लिए पानी और भोजन संबंधित सलाह उम्र के अनुसार स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर से लें। स्वच्छ पानी और स्वच्छता बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ श्रोता साथियों, केवल पानी पीना ही पर्याप्त नहीं है। अगर हमारे हाथ गंदे हैं, हम उन्हीं हाथों से खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या बच्चों को खाना खिलाते हैं, तो कीटाणु हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं। इसलिए हाथ धोना बहुत जरूरी है, खास तौर पर खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले, बच्चों को खाना खिलाने से पहले, शौचालय के उपयोग के बाद, पशुओं को छूने के बाद और गंदगी साफ करने के बाद। साबुन और साफ पानी से हाथ धोने की आदत हमें कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकती है। एक छोटा सा संदेश है, हाथ रहेंगे साफ हमारे, बीमारी से बचेंगे सारे।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि स्वच्छ पानी केवल एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं है। श्रोता साथियों, यह हमारे पूरे गांव की जिम्मेदारी है। अगर गांव का तालाब गंदा है, नाली का पानी जल स्त्रोतों में जा रहा है या पानी के जल स्त्रोतों के आसपास श्रोता साथियों कूड़ा पड़ा है, तो इसका असर ये वो अंजलि जी हम देखते हैं कि पूरे गांव के लोगों पर पड़ता है। गांव के लोग श्रोता साथियों मिल

0: समस्या को छिपाने से समाधान नहीं निकलता। जागरूकता और सामूहिक प्रयास से ही स्वच्छ और स्वस्थ समाज बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, नदी कुआं हो या घर की टंकी, सफाई रखो हर जगह पक्की। स्वच्छ पानी जब घर आएगा, स्वस्थ परिवार मुस्कुराएगा। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि हमारे जीवन में पानी जो है वो बहुत जरूरी है, लेकिन असुरक्षित पानी बीमारी का कारण भी बन सकता है। इसलिए हमें केवल पानी की उपलब्धता पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि उसकी स्वच्छता और सुरक्षित उपयोग पर भी ध्यान देना होगा। अपने घर में साफ पानी रखें, बच्चों को सुरक्षित पानी दें, हाथों की सफाई का ध्यान रखें, अपने गांव के जल स्रोतों को स्वच्छ रखने में योगदान दें। याद रखिए कि स्वच्छ पानी अपनाएंगे बीमारी को दूर भगाएंगे। स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज, यही है जीवन का सच्चा राज।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि जहां दूषित पानी श्रोता साथियों हमारे लिए नुकसान करता है, वहीं पानी की कमी भी हमारे शरीर के लिए परेशानी पैदा कर सकती है।
0: बिल्कुल,
1: जब श्रोता साथियों शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है तो डिहाइड्रेशन यानी कि श्रोता साथियों पानी की कमी ही वो बढ़ती जाती है हमारे शरीर में। पानी की कमी में श्रोता साथियों प्यास लगना, मुंह सूखना, कमजोरी और चक्कर जैसी परेशानियां हैं वो हो सकती हैं। बहुत अधिक पानी की कमी हो जाती है अंजलि जी, तो हम देखते हैं कि जो बीमारियां हैं वो भी हमारे शरीर के अंदर बढ़ने लगती हैं। इसलिए श्रोता साथियों दिन भर में प्यास और शरीर की जरूरत के अनुसार हमें पर्याप्त पानी पीते रहना जरूरी है। यहाँ श्रोता साथियों बीमारी के समय पानी को पीना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल मनीषा, एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए हमें केवल अपने घर की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने आसपास के पानी के स्रोतों की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। गांव का हैडपंप, सार्वजनिक टंकी, कुआं और अन्य जल स्रोत केवल किसी एक व्यक्ति के नहीं होते, बल्कि पूरे समुदाय के धरोहर होते हैं। यदि हम इन्हें गंदा होने देंगे तो उसका असर किसी एक परिवार पर नहीं बल्कि पूरे गांव की सेहत पर पड़ सकता है। जरूरत है कि हम बच्चों को बचपन से ही पानी की कीमत और स्वच्छता का महत्व सिखाएं, उन्हें ये समझाएं कि पानी की एक एक बूंद कीमती है और पीने का पानी साफ रखना भी उतना ही जरूरी है। जब बच्चे सही आदत सीखेंगे तो वे बड़े होकर एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: स्वच्छ पानी का सवाल केवल बीमारी से बचने का सवाल नहीं है, यह बच्चों के भविष्य, महिलाओं के स्वास्थ्य, परिवार की खुशहाली और पूरे समाज की प्रगति से जुड़ा हुआ विषय है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने परिवार की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा सकता है।
1: हाँ।
0: मेहनत कर सकता है, बच्चों की देखभाल कर सकता है और समाज के विकास में योगदान दे सकता है। इसलिए हमें बीमारी आने का इंतजार नहीं करना है। समझदारी इसी में ही है कि हम पहले से ही सावधानी बरतें, अपने घर के पानी को सुरक्षित रखें, आसपास सफाई बनाए रखें, दूसरों को भी जागरूक करें। अगर कहीं पानी गंदा है या जल स्रोत की स्थिति खराब है तो चुप रहने के बजाय सामूहिक रूप से समाधान के लिए कदम उठाएं। हमें ये भी समझना होगा कि स्वच्छता किसी एक दिन का अभियान नहीं बल्कि रोजाना की जिम्मेदारी है। जिस दिन हम अपने घर, परिवार और गांव में पानी को लेकर सजग हो जाएंगे, उसी दिन से बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक मजबूत कदम उठ जाएगा। आज से हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम पानी को व्यर्थ नहीं बहने देंगे, पीने के पानी की सुरक्षा रखेंगे, अपने जल स्रोतों को गंदा नहीं होने देंगे और अपने परिवार व समुदाय को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि साथियों, बदलाव की शुरुआत हमेशा किसी बड़े काम से नहीं होती। कभी कभी एक ढक्कन से ढका हुआ पानी का बर्तन, साफ हाथों से पानी पीने की आदत, बच्चों को सही जानकारी देना और जल स्रोतों के आसपास सफाई रखना भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। याद रखिए, जहाँ पानी सुरक्षित होता है वहाँ परिवार की सेहत मजबूत होती है, जहाँ समुदाय जागरूक होता है वहाँ बीमारियों की चुनौतियाँ कम होती है। इसलिए हम केवल स्वच्छ पानी की मांग करने वाले नागरिक न बने, बल्कि पानी को स्वच्छ रखने वाले जिम्मेदार नागरिक भी बने। क्योंकि आज हमारी छोटी सी सावधानी आने वाले कल में हमारे बच्चों और पूरे समुदाय के लिए स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य का आधार बन सकती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दे।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटो अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार साथियों, कहते हैं कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती और हौसलों की कोई सीमा नहीं होती। इंसान की पहचान उसके बीते हुए वर्षों से नहीं बल्कि उसके भीतर आगे बढ़ने के जज्बे से होती है। कोई कम उम्र में इतिहास रच देता है तो कोई जीवन के कई पड़ाव पार करने के बाद अपनी नई पहचान बनाता है। जी हाँ साथियों, इन्हीं बातों के साथ आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वीकार कीजिएगा साथियों मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हम जब भी हाजिर होते हैं तो हमारी आपसे बातचीत रहती है एक नए विषय को लेकर। आज भी साथियों कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। जैसा कि मेरी शुरुआत की महत्वपूर्ण बातों से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो विषय है वो काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती और हौसलों की कोई सीमा नहीं होती, और यही हमारा आज का विषय है कि उम्र नहीं बल्कि हमारा हौसला हमारी सफलता को तय करता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी कि जीवन में अक्सर हम खुद ही अपने लिए सीमाएं तय कर लेते हैं। कभी हम कहते हैं कि अब मेरी उम्र पढ़ाई करने की नहीं रही, तो कभी हम ये कहते हैं कि अब नया काम शुरू करने में बहुत देर हो चुकी है। कभी आपने किसी युवा को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं अभी काफी छोटा हूँ, मुझसे तो क्या ही हो जाएगा। और कभी कोई बुजुर्ग ये सोचता है कि अब मेरी उम्र निकल गई, अब मैं नया कार्य कैसे शुरू करूँगा। लेकिन क्या सच में सफलता की कोई उम्र होती है दोस्तों? क्या सपने देखने के लिए उम्र तय की जा सकती है? क्या सीखने की कोई आखिरी तारीख होती है? और क्या केवल कम उम्र में सफलता पाने वाला व्यक्ति ही सफल कहलाता है? ये ढेर सारे ऐसे प्रश्न है जो हमारे मन में चलते हैं। तो इसका जवाब है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सफलता का संबंध केवल उम्र से नहीं बल्कि हमारी सोच, मेहनत, लगन और सबसे बढ़कर हमारे हौसले से होता है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं इसी विषय को लेकर आपसे ढेर सारी बातें करूंगी और हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे जो हौसले होते हैं वो अगर मजबूत होंगे तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस विषय पर श्रोता साथियों बातें हम ढेर सारी करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत में सुनते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

दोस्तों, ये गीत तो यहाँ पूरा हो गया। अब इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि गीत से पहले विषय से तो रूबरू मैं आपको करा ही चुकी हूँ कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि उम्र नहीं, हमारे हौसले हमारी सफलता को तय करते हैं। दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगी कि सफलता का संबंध केवल उम्र से नहीं बल्कि हमारी सोच, मेहनत और सबसे बढ़कर हमारे हौसले से होता है, क्योंकि उम्र तो केवल जीवन के वर्षों की गिनती होती है, लेकिन हौसला हमारे अंदर की वह ताकत है जो हमें गिरने के बाद फिर से उठना सिखाती है। जब हौसला मजबूत होता है तो मुश्किल रास्ते भी हमें आसान लगने लगते हैं। जब मन में कुछ अच्छा करने की इच्छा होती है आपके, तो साधनों की कमी भी हमें ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती। और जब इंसान ये तय कर लेता है कि उसे आगे ही बढ़ना है, तो उम्र भी उसके रास्ते की दीवार नहीं बनती। हम जैसा कि जानते हैं कि कई लोग जीवन में बहुत कम उम्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सफलता जीवन के काफी लंबे संघर्ष के बाद मिलती है। इसलिए किसी की सफलता को देखकर ये मत सोचिए कि मैं तो पीछे रह गया या रह गई, बल्कि ये सोचिए कि मेरा समय भी आएगा, बस मुझे अपने कदम रोकने की नहीं आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, जीवन की दौड़ में हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। किसी को मंजिल जल्दी मिल जाती है तो किसी को थोड़ी देर से, किसी को कई बार रास्ता बदलना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति चलते रहने का हौसला रखता है उसके लिए मंजिल दूर जरूर हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं होती। इसलिए दोस्तों, ये जो बात कही गई है कि उम्र नहीं, हौसला हमारी सफलता तय करता है, तो ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि हमारे समाज में कई बार उम्र को लेकर ऐसी धारणाएं बना दी जाती है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। जैसे कि आपने खुद देखा होगा कि बचपन में हमें कहा जाता है तुम अभी छोटे हो, जवानी में कहा जाता है पहले जिम्मेदारियां संभालो, और जब उम्र बढ़ने लगती है तो कहा जाता है कि अब तो इस कार्य को करने की तुम्हारी उम्र ही निकल गई। यानी कि दोस्तों, जीवन के हर पड़ाव पर कोई ना कोई हमें ये बताने के लिए तैयार रहता ही है कि हमें आखिर करना क्या है और हम क्या नहीं कर सकते। लेकिन एक सवाल आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हम खुद के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। अगर दोस्तों हम खुद की मान ले कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो शायद हम कोशिश ही नहीं कर पाएंगे, और जिस दिन कोशिश बंद हो जाएगी उसी दिन आगे बढ़ने का रास्ता भी बंद होने लगता है। लेकिन अगर हमारे अंदर सीखने की इच्छा बनी हुई है तो जीवन हमें हर उम्र में कुछ नया सिखा सकता है। अगर आपको बताऊं तो एक बच्चा चलना सीखता है, लेकिन वो कई बार गिरता भी है। वह गिरने के बाद ये नहीं सोचता कि अब मैं चलने की कोशिश ही नहीं करूंगा, वह फिर से उठता है, फिर कदम बढ़ाता है, फिर गिरता है, और एक दिन वह पूरी तरीके से चलना सीख जाता है। जीवन में बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे सामने कठिनाइयां आएंगी, हम असफल होंगे, कभी कभी तो लोग हमारा मजाक भी उड़ाएंगे, कभी हमारे फैसलों पर सवाल उठेंगे साथियों, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करने से नहीं डरते। तो इस तरीके से, जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें मैं आगे भी ऐसे ही जारी रखूंगी कि हम अपने हौसलों से सफलता कैसे तय कर सकते हैं। लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में, तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, इस गीत के बाद मैं फिर से रुक करती हूँ हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में बातें तो हमारी आपसे बहुत अच्छी चल रही थी, और गीत से पहले भी हम जान पाए थे कि हम किस प्रकार अपने हौसलों से अपनी सफलता को तय कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कई युवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, पहली बार सफलता नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं, मेरी तो उम्र बढ़ रही है और मेरे दोस्त तो अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन क्या केवल पहली असफलता ये तय कर देती है साथियों कि हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, या हम जीवन में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूरत है अपनी कमियों को समझने की और तैयारी का तरीका सुधारने की, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण अपने हौसले को कमजोर नहीं होने देने की। दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो वर्षों तक परिवार की जिम्मेदारियां संभालती रहती हैं, जैसे कि बच्चों की देखभाल, घर का काम, परिवार की जिम्मेदारियां, उन सब में ही उनका समय निकल जाता है। फिर एक दिन उनके मन में ये इच्छा होती है कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, मैं कोई हुनर सीखना चाहती हूँ, मैं अपना काम शुरू करना चाहती हूँ। लेकिन कई बार उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अब मेरी उम्र क्या है और अब मैं शुरुआत कैसे करूँ। लेकिन ऐसे में उन महिलाओं को हमें ये कहना चाहिए कि सपनों को शुरू करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। अगर किसी महिला को सिलाई आती है तो वह उम्र निकलने के बाद भी अपने हुनर को आगे बढ़ा सकती है। अगर कोई महिला पढ़ना चाहती है तो वह आज भी अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती है। अगर कोई महिला आत्मनिर्भर बनना चाहती है तो वह छोटे छोटे कदमों से अपना रास्ता बना सकती है। तो ऐसे में कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन दोस्तों हमारा हौसला बड़ा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब हम किसी सफल व्यक्ति की कहानी सुनते हैं तो अक्सर हमें केवल उसकी सफलता दिखाई देती है, लेकिन उस सफलता के पीछे छिपे संघर्ष के बारे में हम कभी बात नहीं करते। हमें मंच पर खड़ा व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन के वो दिन हमें नहीं दिखाई देते जब उसने अकेले संघर्ष किया होगा। हमें उसकी उपलब्धियां दिखाई देती है, लेकिन उसके डर, उसकी असफलताएं और उसके टूटने के पल हमें दिखाई नहीं देते। साथियों, सफलता पाने वाला व्यक्ति भी इंसान होता है, उसे भी डर लगता है, वह भी कभी निराश होता है और वह भी कई बार हारता है। लेकिन एक बात उसे दूसरों से अलग बनाती है और वो ये है कि वह हारने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता, और देखा जाए तो यही हौसला होता है। साथियों, हौसला ये नहीं है कि हमें कभी डर नहीं लगता, हौसला ये है कि डर लगने के बावजूद हमें आगे कैसे बढ़ना है। हौसला ये नहीं होता कि हमें कभी परेशानी नहीं होगी, हौसला तो ये है कि परेशानी आने पर भी हम समाधान खोजते हैं और फिर भी आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहते हैं, और यही जीवन हमारी असली ताकत का हमें परिचय देता है। श्रोता साथियों, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में बातें मेरी आपसे ढेर सारी रही, हमने जाना कि उम्र केवल एक संख्या होती है, लेकिन हमारे हौसले हमारी जीवन की असली शक्ति होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी उम्र को अपनी सीमा नहीं बनाना है। हम अपनी जीवन की नई शुरुआत करने से नहीं डरेंगे, हम असफलता से सीखेंगे और सफलता को अपना हौसला बनाएंगे। हम अपने सपनों को जिंदा रखेंगे और जीवन में हर पड़ाव पर अपने हौसलों को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करेंगे। श्रोता साथियों, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि न उम्र की सीमा रोक सके न समय की कोई दीवार, जिसके मन में हौसला हो वही करता है जीवन में बड़ा कमाल। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो केवल रास्ते देखते हैं, मंजिल उनके कदम चूमती है जो मुश्किलों में भी चलते रहते हैं।

श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेना चाहूंगी। उम्मीद करती हूं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी आप संपर्क कर सकते हैं साथियों। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: प्रत्युत्तुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नम कुरुतेव सर्वकारितु सर्वदा। जैसा कि श्रोता साथियों, जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है, जब मन में कोई नया सपना जन्म लेता है, जब जीवन में कोई नई राह चुननी होती है, जब सबसे पहले जिस नाम का स्मरण किया जाता है वह नाम है भगवान श्री गणेश का।
1: बिल्कुल।
0: आज हम कार्यक्रम में जानेंगे गणेश चतुर्थी के महत्व और साथ ही हिंदी दिवस के महत्व को लेकर ढेर सारी बातों को। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में, जैसा कि हमारे श्रोता साथी जानते हैं कि गीत संगीत के माध्यम से हम शुरुआत करते हैं, ताकि हमें पता चले कि किस तरीके से आज का ये जो दिन है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और सबसे पहले किस तरीके से गणेश जी की पूजा वंदना हम सभी करते हैं। तो श्रोता साथियों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्वर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारश्वर के साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बात रहने वाली है गणेश चतुर्थी के पावन पर्व को लेकर। तो जैसा कि अंजलि जी, हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो त्योहारों और धार्मिक परंपराओं का देश है। यहाँ मनाए जाने वाले प्रत्येक त्योहार का अपना एक धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व होता है। देखा जाए श्रोता साथियों, तो गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख और लोकप्रिय पर्व है। यह भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश जो कि बुद्धि, ज्ञान, विवेक, समृद्धि और शुभता के दाता है। हम देखते हैं दोस्तों कि किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए उन्हें प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। अंजलि जी,
1: जी हाँ कशिश, गणेश चतुर्थी भारत के प्रमुख और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इस दिन भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में यह पर्व जो है वो बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।
0: जी जी,
1: घरों के मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है, पूजा अर्चना होती है, भजन गाए जाते हैं और प्रसाद के रूप में विशेष रूप से मोदक चढ़ाए जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और शुभ कार्यों के आरंभ के देवता भी माना जाता है। इसलिए किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले उसका स्मरण किया जाता है। लेकिन क्या श्रोता साथियों, हमने कभी भगवान गणेश के स्वरूप से मिलने वाले सीख को समझने की कोशिश की है? श्रोता साथियों, भगवान गणेश का बड़ा सिर हमें बड़ा सोचने और ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देता है।
0: बिल्कुल,
1: उनके बड़े कान हमें सिखाते हैं कि जीवन में केवल बोलना ही जरूरी नहीं है, कभी कभी दूसरों की बात ध्यान से सुनना भी जरूरी है। उनकी छोटी आंखें हमें एकाग्रता का संदेश देती है। उनकी सूंड हमें परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की सीख देती है।
0: बिल्कुल,
1: भगवान गणेश का छोटा मुख मानो हमें यह संदेश देता है कि कम बोले और सोच समझ कर बोले। उनका बड़ा पेट जीवन की अच्छी बुरी परिस्थितियों को धैर्य पूर्वक स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। उनका वाहन मूषक यह संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति या जीव छोटा नहीं होता। बुद्धि और समझदारी के बल पर बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी निभाई जा सकती है।
0: जी हाँ,
1: गणेश चतुर्थी हमें परिवार समाज को जोड़ने का अवसर देती है। गांव और शहरों में लोग एक साथ पूजा करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं और आपसी भाईचारे को मजबूत बनाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, देखते हैं श्रोता साथियों की गणेश पूजा की परंपरा अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य में भगवान गणेश जी का वर्णन अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल,
0: समय के साथ गणेश जी की पूजा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लोकप्रिय होती गई। दोस्तों, गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव के रूप में विशेष प्रसिद्धि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से मिली थी।
1: जी हाँ,
0: आपको बताना चाहेंगे कि 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उन्होंने गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप दिया। उस समय अंजलि जी, ये उत्सव लोगों को एक साथ आने और सामाजिक एकता मजबूत करने का माध्यम बना। इस प्रकार दोस्तों, धार्मिक पर्व ने सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को भी बढ़ावा दिया।
1: बिल्कुल,
0: आज हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और भारत की कई अन्य राज्यों में गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है।
1: बिल्कुल कशिश, आज के समय में गणेश चतुर्थी हमें एक और महत्वपूर्ण संदेश देती है, नई शुरुआत का साहस। कई बार हम किसी काम को लेकर शुरू करने से डरते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं, लेकिन हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। अगर किसान नई तकनीक अपनाना चाहता है, युवा अपना कोई नया काम शुरू करना चाहता है, महिला स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है या कोई बच्चा पढ़ाई में बेहतर करना चाहता है, तो सबसे जरूरी है कि पहला कदम उठाए। गणेश चतुर्थी केवल भगवान गणेश की पूजा करने का दिन नहीं, यह दिन हमें भीतर बुद्धि, धैर्य, विनम्रता और सकारात्मक सोच को जगाने का है।
0: जी हाँ,
1: इस गणेश चतुर्थी पर हम केवल सुख समृद्धि की प्रार्थना न करें श्रोता साथियों, बल्कि यह संकल्प भी लें कि हम अपने जीवन की बाधाओं का सामना समझदारी और धैर्य के साथ करेंगे।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातचीत गणेश चतुर्थी के पावन पर्व को लेकर चली रही है, ये बातें ऐसे ही आगे और भी जारी रहेंगी, लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से गणेश जी भगवान के जीवन से हम बहुत ही अच्छी सीख ले सकते हैं अपने जीवन में, और किस तरीके से ये जो त्योहार है वो हमें समाज से जोड़ता है।
1: जी हाँ,
0: तो साथियों, त्योहार की असली खुशी केवल सजावट या बड़े आयोजन से नहीं होती। असली खुशी तब होती है जब समाज के लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोग मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, खुशियां बांटते हैं, और ये अवसर समाज में मेल जोल और भाईचारे को मजबूत बनाता है।
1: बिल्कुल,
0: आज भागदौड़ भरी जिंदगी में कशिश पड़ोसी भी कई बार दूसरों पड़ोसी से ठीक से बात नहीं कर पाते। गाँव में भी पहले की तरह बैठकर बातचीत करने का समय कम होता जा रहा है। ऐसे में त्योहार हमें फिर से जोड़ने का काम करते हैं। हम अपने आसपास यह भी ध्यान दें कि कहीं कोई परिवार ऐसा तो नहीं जो आर्थिक परेशानी के कारण त्योहार की खुशी से दूर हो। अगर हम अपनी खुशी में किसी जरूरतमंद को शामिल करें तो त्योहार का आनंद और भी बढ़ जाता है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। आज नदियां, तालाब और अन्य जल स्रोत हमारे जीवन का आधार है।
1: जी हाँ।
0: इनकी स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। त्योहार मनाते समय हमें ऐसी चीजों का उपयोग करने की और उन्हें बचाने की जरूरत है जिनसे पानी, मिट्टी, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे।
1: बिल्कुल,
0: पर्यावरण अनुकूल तरीके से हमें इन त्योहारों को मनाना चाहिए और बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ हम इन्हें मना सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: घर और गांव की साफ सफाई पर ध्यान रखें, अनावश्यक प्लास्टिक के उपयोग से बचे श्रोता साथियों, और प्रकृति के प्रति सम्मान रखें। भगवान की पूजा का सबसे सुंदर रूप केवल मंदिर में दीप जलाना ही नहीं बल्कि उस प्रकृति की रक्षा करना भी है जिसने हमें जीवन दान दिया है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। श्रोता साथियों, हम कह सकते हैं कि गणेश चतुर्थी का धार्मिक महत्व काफी अधिक है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता यानी कि बाधाओं को दूर करने वाला और बुद्धि और विवेक का देवता माना जाता है। भक्तों का विश्वास है अंजलि जी कि सच्चे मन से गणेश जी की अगर पूजा की जाती है तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: देखते हैं कि गणेश जी का स्वरूप भी अनेक शिक्षाएं देता है। जैसा कि आपने भी बताया था कि उनका बड़ा सिर जो है वो अधिक ज्ञान और विचार करने का संदेश देता है। बड़े कान श्रोता साथियों अधिक सुनने की शक्ति देते हैं, और छोटी आंखें एकाग्रता का प्रतीक मानी जाती है। उनका वाहन मूषक यह संदेश देता है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं को अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। गणेश चतुर्थी श्रोता साथियों समाज को एकजुट करने वाला पर्व है। सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमा स्थापित की जाती है और लोग मिलकर पूजा, भजन, आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इससे अंजलि जी लोगों में सहयोग के साथ साथ भाईचारे और सामूहिक भावना भी विकसित होती है।
0: जी हाँ कशिश, यही बात करें कि माता पार्वती ने कैसे की गणेश जी की रचना, तो श्रोता साथियों पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने निवास स्थान पर थी।
1: बिल्कुल,
0: स्नान करने के लिए जा रही थी और चाहती थी कि उस समय कोई भी भीतर प्रवेश न करे। कहा जाता है कि माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे तन से एक बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण डाल दिया। वह बालक माता पार्वती के लिए अत्यंत प्रिय था।

0: माता पार्वती ने उस बालक से कहा, पुत्र मैं स्नान करने जा रही हूँ, जब तक मैं वापस न आऊं किसी को भी अंदर प्रवेश करने मत देना। बालक ने माता की आज्ञा स्वीकार की और द्वार पर पहरे देने लगे। कुछ समय पास शिव भगवान वहां पहुंचे और वे अपने निवास में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोक दिया।
1: बिल्कुल,
0: भगवान शिव ने बालक से कहा कि वह रास्ते से हट जाएं, लेकिन बालक ने विनम्रता से उत्तर दिया कि वह अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, किसी को भी भीतर नहीं जाने देंगे। बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करने के लिए पूरी तरह दृढ़ थे। भगवान शिव ने उसे कई बार समझाया, लेकिन वह अपने स्थान से नहीं हटा। धीरे धीरे बात बढ़ गई और संघर्ष की स्थिति बन गई। कथा के अनुसार भगवान शिव के गणों ने भी उस बालक को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह बहादुरी से अपने स्थान पर डटा रहा। भगवान शिव बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई और उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को इस अवस्था में देखा तो अत्यंत दुखी हो गई और क्रोधित हो गई। अपने पुत्र की ऐसी स्थिति देखकर माता पार्वती का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि उनका पुत्र उन्हें वापस चाहिए। माता पार्वती के दुख और क्रोध को देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। भगवान शिव को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर जाएं और जिस भी जीव का सिर सबसे पहले दिखाई दे उसका सिर लेकर आ जाए। कथा के अनुसार गणों को एक हाथी मिला। वे हाथी का सिर लेकर आए और भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक की धड़ से जोड़ दिया और अपने दिव्य वरदान से उसमें फिर से प्राण डाल दिए। इस प्रकार वह बालक पुनः जीवित हो गया। जब बालक को हाथी का मुख मिला तब वे गजानंद कहलाए। माता पार्वती ने अपने पुत्र को जीवित देखकर बहुत उन्हें अंदर से प्रसन्नता हुई और भगवान शिव ने भी गणेश जी को अपना पुत्र स्वीकार किया।
1: बिल्कुल,
0: कथा के अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी को एक विशेष वरदान दिया कि संसार में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले सबसे पहले उनका पूजन किया जाएगा। इसी कारण भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। विघ्नहर्ता कहलाते हैं और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो ये तो आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे श्रोता साथियों को बताया कि गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम क्यों की जाती है और गणेश जी को गजानन भी क्यों कहा जाता है, जैसा कि आपने पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से और कथा के हिसाब से हमारे श्रोता साथियों को बताया।
0: बिल्कुल,
1: अब यही अगर बात करें दोस्तों तो आपसे कहना चाहेंगे कि इस पावन पर्व का महत्व पर्यावरण की दृष्टि से भी देखा जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि आधुनिक समय में गणेश चतुर्थी मनाते समय पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देना जरूरी है। पहले कई अंजलि जी स्थानों पर प्रतिमाएं ऐसी सामग्री से बनाई जाती थी जो जल में घुलने में कठिनाई पैदा करती थी। इससे नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों को नुकसान होता था। इसलिए श्रोता साथियों, आज मिट्टी से बनी प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिमाओं को प्रोत्साहित किया जाता है।
0: जी जी।
1: प्राकृतिक रंगों का उपयोग, कृत्रिम सजावट के स्थान पर पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग करके हम धार्मिक आस्था के साथ प्रकृति की रक्षा भी कर सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: हम देखते हैं अंजलि जी कि ये जो त्योहार है वो भारतीय कला और संस्कृति को भी बढ़ावा देता है। जगह जगह पर गणेश जी की सुंदर प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, पंडाल सजाए जाते हैं, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और आधुनिक समय में गणेश चतुर्थी मनाते समय पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि हमने बताया श्रोता साथियों के, पहले कई स्थानों पर ऐसी प्रतिमाएं बनाई जाती थी जो पर्यावरण को नुकसान देती थी, लेकिन वर्तमान में मिट्टी के गणपति बनाने की परंपरा काफी प्रचलन में है।
0: बिल्कुल कशिश, गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर हम भगवान गणेश से केवल अपने जीवन की बाधाएं दूर करने की प्रार्थना ही न करें, बल्कि अपने भीतर भी ज्ञान, धैर्य, साहस और कर्तव्य के प्रति निष्ठा का विकास करें।
1: बिल्कुल,
0: जहाँ बुद्धि का प्रकाश हो, जहाँ धैर्य का साथ हो, जहाँ हर कार्य में सच्ची निष्ठा हो, वही जीवन की राह आसान होती है। इसलिए हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे कि गणेश चतुर्थी का ये जो पावन पर्व है वो पूरे 10 दिनों तक हम पूरे धूमधाम से मनाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इन सारी चीजों में हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, पर्यावरण का भी ध्यान रखना है और साथ ही मिलकर इस त्योहार को अच्छे से मनाने की जरूरत है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि हम त्योहार तो मनाते हैं और उस समय जो भी चीजें होती है उसमें बहुत से लोग दिखावे के चक्कर में इधर उधर की चीजें करते हैं, किसी की मन भेद होते हैं इधर उधर, तो उन सारी चीजों को लेकर भी इन सारी चीजों में एक दूसरे पर कह सकते करते हैं कि बेर निकालने की कोशिश करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें वो सारी चीजें नहीं करनी है। ये हमारे जो महत्वपूर्ण त्योहार हैं, इन्हें हम अच्छे से मनाएं, शांति से मनाएं, क्योंकि भगवान गणेश जो है उनके जीवन से हम कई सारी सीख ले सकते हैं, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं।
1: बिल्कुल।
0: उनके जीवन से सीख लेकर धैर्य को अपना कर शांतिपूर्वक इस त्योहार को मनाएं। और आशा करते हैं कि गणपति बप्पा मोरिया को लेकर जो हमारी आपसे बातें रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आगे हम कार्यक्रम में आज हिंदी दिवस को लेकर भी कशिश ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम का एक और गीत सुनवाना चाहेंगे।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने कहा था कि अब हम बात करने वाले हैं हिंदी दिवस के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, कभी आपने सोचा है कि जब कोई बच्चा पहली बार बोलना सीखता है तो उसके मुख से निकले शब्द इतने खास क्यों लगते हैं? क्यों माँ की आवाज में बोला गया एक छोटा सा शब्द भी मन को छू जाता है? क्यों दादी की सुनाई कहानियां वर्षों बाद भी हमें याद रहती है? क्योंकि भाषा केवल शब्द नहीं होती, भाषा हमें भाषा में रिश्ते होते हैं, संभावनाएं होती हैं, यादें होती हैं और हमारी पहचान होती है। हमारी भाषा हमें कशिश अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपने जड़ों से जोड़ने को सीख देती है।
1: बिल्कुल।
0: भारत जैसी विविधताओं से भरे देश में अनेक भाषाएं और बोलियां हमारी खूबसूरती है। इन भाषाओं के बीच हिंदी भी करोड़ों लोगों के संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: बिल्कुल।
0: हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है हमें हिंदी के महत्व को समझाने, उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने और अपने दैनिक जीवन में भाषा के सही और सहज उपयोग के बारे में सोचने का अवसर देता है।
1: बिल्कुल।
0: आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं हिंदी की यात्रा, उसकी उपयोगिता, हमारी स्थानीय बोलियों से उसका रिश्ता और बदलते समय में हिंदी की भूमिका के बारे में।
1: बिल्कुल अंजलि जी, अगर यहाँ पर सबसे पहले जाने कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो श्रोता साथी 14 सितंबर का दिन हिंदी के इतिहास में विशेष महत्व रखता है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। अंजलि जी, इसी ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में श्रोता साथियों हर वर्ष आज ही के दिन को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: यहाँ एक बात समझना और भी जरूरी है कि हिंदी दिवस केवल हिंदी बोलने या लिखने का उत्सव नहीं है, ये अपनी भाषा के प्रति जागरूक होने का अवसर भी है।
0: बिल्कुल
1: अंजलि जी, भाषा किसी भी समाज की आत्मा होती है, ये बात हम सभी जानते हैं। भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी अपने अनुभव से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। हमारी लोक कथाएं, लोकगीत, कहावतें, मुहावरे, साहित्य, इतिहास और यहाँ तक कि सामाजिक परंपराएं भी भाषा के माध्यम से ही जीवित रहती हैं। इसलिए हिंदी का सम्मान करना केवल एक भाषा का सम्मान करना नहीं है दोस्तों, बल्कि उससे जुड़ी विशाल सांस्कृतिक परंपरा का सम्मान करना भी है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहें कि 14 सितंबर का दिन हिंदी के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हिंदी का विकास किसी एक दिन में ही हुआ, यह लंबे समय से भारत के अलग अलग भाषाई और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच विकसित हो रही है।
1: जी हाँ।
0: साहित्य ने समाज के अलग अलग वर्गों की भावनाओं, संघर्षों, सपनों और जीवन को शब्द दिए हैं। हिंदी की विशेषता यह भी है कि इसमें समय के साथ स्वयं को बदला है, नए शब्दों को अपनाया है, नई तकनीक के साथ कदम मिलाया है और संचार के नए माध्यमों में अपनी जगह बनाई है। आज हिंदी केवल किताबों और विद्यालयों तक सीमित नहीं है, यह रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, संचार, इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया पर भी व्यापक रूप से इस्तेमाल होती है।
1: बिल्कुल।
0: सामुदायिक रेडियो के लिए भाषा का महत्व और भी ज्यादा है।
1: जी हाँ।
0: सामुदायिक रेडियो का उद्देश्य केवल कार्यक्रम प्रसारित करना नहीं होता, बल्कि स्थानीय समुदाय की आवाज को समुदाय तक पहुँचाना है। जब किसी किसान को खेती की जानकारी उसकी समझ की भाषा में मिलती है श्रोता साथियों, तो जानकारी ज्यादा आसानी से जीवन में उतरती है।
1: जी हाँ।
0: भारत में भाषा की सबसे बड़ी भूमि, खूबसूरती उसकी विविधता ही है। हमारे वागड़ क्षेत्र में हिंदी के साथ स्थानीय बोलियों का भी अपना विशेष स्थान है।
1: जी जी।
0: स्थानीय बोली में गांव का जीवन बोलता है, खेत खलियान, रिश्ते, लोकगीत, त्योहार, परंपराएं और पुरानी यादें सब उनमें समाई होती है।
1: जी
0: इसलिए
1: हाँ।
0: हिंदी दिवस मनाते समय हमें अपनी स्थानीय बोलियों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। हिंदी और स्थानीय बोलियां एक दूसरे की विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर हमारे भाषाई संसार को समृद्ध करती है। एक व्यक्ति घर में अपनी स्थानीय बोली बोल सकता है, विद्यालय में हिंदी सीख सकता है और आवश्यकता के अनुसार दूसरी भाषाएं सीख सकता है। भाषा सीखने से हमारा संसार छोटा नहीं बल्कि बड़ा होता है। इसलिए
1: हाँ।
0: बच्चों को हमें यह नहीं कहना चाहिए कि

0: ये बोली बोलना गलत है, बल्कि उन्हें अपनी मातृभाषा स्थानीय बोली पर गर्व करना सिखाना चाहिए और साथ ही हिंदी और अन्य भाषा का ज्ञान भी देना चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा, क्योंकि दोस्तों हिंदी का विकास एक लंबी ऐतिहासिक और भाषाई प्रक्रिया का परिणाम है। हिंदी की विकास यात्रा भारतीय भाषाओं की समृद्ध परंपराओं से जुड़ी हुई है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि संस्कृत से प्राकृत, अपभ्रंश और विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों के विकास की प्रक्रिया से आधुनिक भारतीय भाषाओं ने अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया।
0: जी जी
1: दोस्तों, हिंदी के विकास में अवधी, ब्रज भाषा, भोजपुरी, बुंदेली, राजस्थानी और अन्य अनेक लोक भाषाएं और बोलियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम बात करें तो हिंदी साहित्य की परंपरा भी बहुत ज्यादा समृद्ध रही है।
0: जी जी।
1: जैसे कि कबीर, तुलसीदास, सूरदास, रहीम, रसखान जैसे रचनाकारों ने भारतीय समाज और संस्कृति को अपनी रचनाओं के माध्यम से गहराई से प्रभावित किया। बाद के समय में हिंदी साहित्य ने आधुनिक रूप ग्रहण किया। वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी इतिहास के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले साहित्यकार के रूप में माना जाता है। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, ऐसे अनेक साहित्यकारों ने हिंदी को समृद्ध बनाया। अंजलि जी
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि हिंदी की खूबसूरती यही है कि इसने समय समय पर दूसरी भाषाओं से शब्द ग्रहण किए और अपने शब्द भंडार को व्यापक बनाया।
0: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जान रहे हैं, आगे भी ये बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही आपको कहना चाहेंगे कि बच्चों के विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: बिल्कुल।
0: बच्चा सबसे पहले अपने आसपास के लोगों से भाषा सीखता है, माँ पिता की बातचीत, दादा दादी की कहानियाँ, घर में होने वाली बातचीत और आसपास का वातावरण उसके शब्द भंडार को विकसित करता है।
1: बिल्कुल।
0: अगर घर में बच्चों से बातचीत की जाए, उन्हें सवाल पूछने दिए जाए, कहानियाँ सुनाई जाए और किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए कशिश, तो उसकी भाषा के साथ साथ उसकी सोचने और समझने की क्षमता भी विकसित होती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए माता पिता को बच्चों के हाथ में हर समय मोबाइल देने के बजाय उनसे बातचीत करनी चाहिए।
1: जी हाँ,
0: बच्चे से पूछिए कि आज स्कूल में क्या हुआ, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगी, तुमने आज क्या नया सीखा। इन छोटे छोटे सवालों से बच्चों को अपनी बात व्यक्त करने सीखने का अवसर मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: हिंदी साहित्य की परंपरा श्रोता साथियों बहुत ही समृद्ध रही है। कवियों लेखकों ने केवल मनोरंजन के लिए इन सारी चीजों को नहीं लिखा, बल्कि समाज की समस्याओं, गरीबी, असमानता, संघर्ष, प्रकृति, मानवीय रिश्तों और देश प्रेम को भी अपनी रचनाओं का स्थान दिया है।
1: बिल्कुल।
0: कविताओं ने भावनाओं को आवाज दी है, कहानियों ने समाज का आईना दिखाया है, उपन्यास ने जीवन के अनेक पहलुओं को सामने रखा है, नाटक ने सामाजिक प्रश्नों को लोगों के सामने रखा है। साहित्य हमें केवल पढ़ना नहीं सिखाता, बल्कि दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी परिस्थिति को समझना भी सिखाता है।
1: बिल्कुल।
0: जब हम किसी कहानी में किसी गरीब किसान, मजदूर महिला या बच्चे का जीवन पढ़ते हैं, तो हमें उसकी परेशानियों को महसूस करने का अवसर मिलता है और यही साहित्य की ताकत होती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी। श्रोता साथियों, हम सभी को यह समझना होगा कि हिंदी की सबसे बड़ी ताकत इसकी विविधता है। हिंदी की शक्ति केवल मानक हिंदी में नहीं, बल्कि इससे जुड़े विशाल लोक भाषाई संसार में भी है। हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में अंजलि जी हिंदी की अनेक रूप सुनाई देते हैं। कहीं ब्रज भाषा की मिठास है, कहीं अवधि की सहजता, तो कहीं भोजपुरी की जीवंतता, वहीं कहीं बुंदेल की अपनी पहचान और कई राजस्थान भाषाई संस्कृति की विशिष्टता है।
0: बिल्कुल।
1: ये सभी हमारी भाषाई विरासत का हिस्सा है दोस्तों, इसलिए हमें स्थानीय बोली और लोक भाषाओं को कमतर नहीं समझना चाहिए। सामुदायिक रेडियो भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थानीय लोकगीत, कहावतें, लोक कथाएं, बुजुर्गों की स्मृतियां, ये सभी चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार किया जाता है। साथ ही अगर बात करें तो हिंदी दिवस हमें केवल ये याद नहीं दिलाता कि हिंदी हमारी राजभाषा है, यह दिन हमें ये संदेश देता है कि हमें अपनी भाषा को व्यवहार में सम्मान देना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: अपने बच्चों को हिंदी पढ़ने और लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और हमें हिंदी बोलने वाले व्यक्ति का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए साथियों।
0: जी हाँ।
1: हमें बच्चों को हिंदी पढ़ने और लिखने के साथ साथ हिंदी में आगे अपना करियर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: हमें डिजिटल दुनिया में हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अन्य भारतीय भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारत की वास्तविक सुंदरता उसकी भाषाई विविधता में है। अंजलि जी,
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से गणेश चतुर्थी और हिंदी दिवस के महत्व को लेकर ढेर सारी बातें हो गई हैं।
1: बिल्कुल।
0: और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे, ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: नमस्कार।
1: साथी दोस्तों, आप सभी को छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपनी फरमाइश की गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, आप भी हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं, आप भी आपकी फरमाइश की गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप भी आपकी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गजरू द्वारा से। फिल्म का नाम है लोफर, गीत के बोल हैं आज मौसम बड़ा बेईमान है। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है शमशिल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनु खान जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश जी मल्होत्रा। इस गीत के अनुरोध करता है सरधाना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन। सरधाना मेरठ से जुड़ रहे हैं आदि जैन, अंश जैन, भवीजी जैन। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती से हीरामन शेंडे और सिद्धार्थी जी गोड़ानी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है लोफर, गीत की बोल ही आज मौसम बड़ा बेईमान है। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडितपुर सिटी से। फिल्म का नाम है आशिकी, गीत के बोल ही धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। इस गीत को आवाज दी है अनुराधा जी ने और कुमार सोनू जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोरके जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं गाजियाबाद से शिशपाल जी। इस गीत के अनुरोध करता है नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, शुरबे शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। इसी बीच जुड़ना चाह रहे मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही जी मलिक। भागपत यूपी से जुड़ना चाह रहे हैं आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है आशिकी, गीत के बोल ही धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। इस गीत को आवाज दी है अनुराधा जी ने और कुमार सोनू जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

श्रोता साथियों, अभी हमने कुमार सोनू और अनुराधा जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है पत्थर के फूल। गीत के बोल हैं, कभी तो छलिया लगता है, कभी तो दीवाना लगता है। इस गीत की फरमाइश करता है गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रही मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित और सोमू और मानसी राज। इसी बीच जुड़ना चाह रहे सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांशी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रहे हैं पीयूष सिक्का, कोनिका सिक्का, डुग्गू सिक्का, भाविका जी सिक्का। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, कभी तो छलिया लगता है, कभी तो दीवाना लगता है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है इलाका, गीत के बोल ही देवा हो देवा गली गली में। इस गीत की फरमाइश करता है हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं सहारनपुर से समेद मशरूम, साइना हसन, अगजा अदीब जी, नाजिया आफिया, इब्राहिम और सदाम जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। इसे भी जुड़ना चाह रहे जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना जी भाटिया। इस गीत के अनुरोध करता है बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश जी मुणत। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को, गीत की बोल ही देवा हो देवा गली गली में। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है दूसरा आदमी। गीत के बोल है नजरों से कह दो। इस गीत की फरमाइश करता है छन्नूराज श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, रंजन योगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं रतलाम एमपी से श्री रंजूभाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी जी धाकड़। इस गीत के अनुरोध करता है गंजरुद्वारा से यासीन हाशमी, नवजा बेगम हाशमी, तोसीफ हाशमी, तोइनूर हाशमी, कलीम अंसारी जी। कलानौर से जुड़ना चाह रहे हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदनी नामदेव, नेहा नामदेव, निशा नामदेव, छन्नूला श्रीवास, रंजन शाहू जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही नजरों से कह दो। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और किशोर कुमार जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है उत्तर प्रदेश दुल्हापुर से। फिल्म का नाम है बेहताब। गीत के बोल हैं जब हम जवां होंगे। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और शब्बीर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरार, नरगिस जी खातून। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से सायद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नूरीन अंसारी, अफसना अंसारी, मोहम्मद फेकजी अंसारी। झारखंड से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे लोरमी चचेड़े छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है बेताब। गीत के बोल ही जब हम जवान होंगे। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और शब्बीर कुमार जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए साथियों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कोपरगांव से। फिल्म का नाम है मरते दम तक, गीत के बोल हैं देवा हो देवा गणपति देवा। इस गीत की फरमाइश करता है सुरेश मालोदी, वर्षा मालोदी। सेवगांव से जुड़ना चाह रहे हैं श्री राम गोदली और उषा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकिस्ट्रो, रोजी डिकिस्ट्रो, पल डिकिस्ट्रो, विलेज सी डिकिस्ट्रो। इस गीत के अनुरोध करता है भागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बेटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी, सुधीर न्यूतन, रामनाथ कश्यप जी। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी जी। इस गीत के अनुरोध करता है गंजुडवारा उत्तर प्रदेश से अवताब अंसारी, रियाना अंसारी, मोहम्मद फेक अंसारी, अनवर मास्टर, लुभाना अंसारी, आलिया जी अंसारी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही देवा हो देवा गणपति देवा। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आई श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है आशा, गीत के बोल हैं शीशा हो या दिल टूट जाता है। इस गीत की फरमाइश करता है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी गोस्वामी, टिम्पल टिम्पल, मीनाक्षी निशा और तुलसी और दिशाजी गोस्वामी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब जी और लड्डू जी। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रसाद राजेंद्र जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है खड़वा से अब्दुल गफा डावर जी, अब्दुल हक डावर जी, जिया हक डावर जी, मोहम्मद उमर डावर जी, राजेंद्र जी कटारा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं सोहन जोशी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है आशा, गीत के बोल ही शीशा हो या दिल टूट जाता है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वागत है श्रोता साथियों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपके साथ रोजाना बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच श्रोता साथियों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। जैसा कि साथियों आज भी सिलसिला सुबह 11 बजे से बना हुआ था, जिसे आप सभी सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा पटेल के साथ में, और अब आप सुनने वाले इसे मेरे साथ यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और इसी स्वागत और अभिनंदन के साथ श्रोता साथियों मैं बढ़ना चाहूंगी हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। जैसा कि दोस्तों आज हम सभी मिलकर गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मना रहे हैं, कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे गीत संगीतों के साथ हम मनोरंजन कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज बप्पा हम सभी के घर पर आएंगे और 10 दिन तक वो हमारे विघ्न हरेंगे, हमारी समस्याओं को देखेंगे, और जिस अनंत चतुर्दशी के दिन जिस दिन वो जाएंगे उस दिन हमारे सभी कष्टों को वो हर कर अपने साथ लेकर जाएंगे और खुशियाँ बटोर कर जाएंगे। तो साथियों इसी पावन पर्व को लेकर आज की फरमाइश का गीत हमारे पास आया है। फिल्म का नाम है अग्निपथ, गीत के बोल हैं देवा श्री गणेशा देवा। ये ताला महाराष्ट्र से ये फरमाइश आई है। श्रोता साथियों आपको बताना चाहूंगी फरमाइश करता जुड़ रहे शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णय जायसवाल, दुर्गाश्री जायसवाल, राखी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल जी, और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। इंदौर से हैं वंदना जी, चौहान जी, मराठा पूजा, रेखा रघुवंशी, ललिता जगदीश चौहान जी, युवराज वानखेड़े, लक्ष्मी नारायण भाऊ खड़से जी। इंदौर प्रदेश से और भी श्रोता साथी हैं, नारायण खड़चे, ललिता खड़चे, गणेश खड़चे, कार्तिक खड़चे, संजना परी खड़चे, स्वाति प्रयागराज चौधरी, लड्डू देविका चौधरी, और भी हमारे दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। आपको बताना चाहूंगी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं अजित कसना, माया देवी, ऋतिक आदित्य कसाना, अल्दावली मुरादाबाद से हैं। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं देवा श्री गणेशा देवा। तब तक आप बने रहिएगा दोस्तों कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था और इस गीत के बाद मैं आप सभी का स्वागत करते हुए बढ़ना चाहूंगी फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। साथियों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है मधुबनी बिहार से। फिल्म का नाम है, आपको बताना चाहूंगी, फराह गीत के बोल हैं और इस दिल में क्या रखा है। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे मधुबनी बिहार से शबीर परवाना, शाहिद अली, जाहिद अली जी और शाहिद अली जी। इसी बीच हमारे श्रोता साथी जुड़ रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेले, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन जी। श्रोता साथी हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान, पूजा परिहार जी। और भी दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं इसी गीत के साथ में, नवा शहर पंजाब से गगनदीप थाटी, त्रिजत कुमारी थांडी, प्रियंका प्रशांत थांडी, प्रियम वामिका वाणी थांडी जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं और इस दिल में क्या रखा है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की, और अगली फरमाइश का गीत आया है यवतमाल से। फिल्म का नाम है दोस्तों बताना चाहूंगी महादेव। गीत के बोल हैं एक दंताय वक्रतुंडाय गोरी तनाय धीमहि। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं रामहरि लोखंडे, मंजू लोखंडे, सूरज लोखंडे जी, और भी हमारे दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं, नंद किशोर गटे, संगीता गटे, साक्षी गटे, अंजलि कर्मा, बाला साहेब करवा, जयश्री मेहता, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टोल, बीपी खुलते जी। हमारे साथी जुड़ रहे हैं जाकुद राजस्थान से, शंभुदाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुनलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। उत्तराखंड से जुड़ना चाह रहे ताजमहल अंसारी, गुलाम शाबी राही, महराज जहां। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं एक दंताय वक्रतुंडाय। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी तनाय धीमहि, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। श्रोता साथियों, अगली फरमाइश का गीत है उच्चपट्टी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया है। फिल्म का नाम है इलाका, गीत के बोल हैं देवा हो देवा गली गली में तेरे नाम का है शोर। इस गीत को आवाज दी किशोर कुमार जी और आशा भोसले जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, अन्नू गोस्वामी जी। इसी बीच जुड़ रहे हैं चोकुलंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सिद्धवासी, निगत प्रवीण अब्बासी, सैम नवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण। दिद्या हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया जी। नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नवाड़कर, निर्मल नवाड़कर, विशाल नवाकर। महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताडे, आशीष मोहेरकर जी। तो आइए साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं देवा हो देवा गली गली में तेरे नाम का है शोर। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की और अगली फरमाइश का गीत आया है धनोरी तेलीवाला से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों वीर जारा, गीत के बोल हैं आया तेरे दर पर दीवाना। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं तेलीवाला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू जी और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्स सोहिनी, मोहितिक, बलवीर सिंह जी और भी अनुरोध करता है इस गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, प्रियांशी जी, तो आइए दोस्तों मनोरंजन कर लेते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं आया तेरे दर पर दीवाना। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आया है। फिल्म का नाम है एनीबॉडी कैन डांस। गीत के बोल हैं शंभू सुताया। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से रामशेर विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रजना बदना, प्रियल दिव्यांशी विश्वकर्मा जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे। गनगोलता दातागंज से हैं इसरत खान, शायरा बेगम, रहवूद खान, शबीर बरवाना जी, शाहबाज खान, शेफ खान, ईशान खान। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कनेजा, पूनम कनेजा, विशाल प्रिया जुछानी, निमित आहूजा जी। गंजरद्वारा से हैं मोहम्मद यासिन आशमी, में आजमा बेगम आशमी, नाजमा जी, तौसीफ आशमी, तैमूर आशमी, कलीम अंसारी जी। कोटाकला दुर्ग से है संजय साहू, सुधा साहू, शशांक साहू, सीमा साहू और भी दोस्त। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं गुणवंत शिवास, करुणा शिवास, आयुश्रीवास, विवेक शिवास, बेबी आशीष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो, मानस राज। यूपी से जुड़ना चाह रहे हैं सुरेश चौरसिया, सुबुद चौरसिया, सरोज चौरसिया, सलोनी चौरसिया, लल्ला चौरसिया, पूजा पिंकी चौरसिया, शिवा शिवानी चौरसिया जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इस गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छनुला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव वाधवानी जी और भी दोस्त जुड़े हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से ही छनुला श्रीवास, रंजन साहू जी। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं शंभू सुताया। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूंगी हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। श्रोता साथियों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है फजल का पंजाब से। फिल्म का नाम है, आपको बताना चाहूंगी श्रोता साथियों, मोर यारे गीत के बोल है। फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं सुभाष गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा जी और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। जुड़ रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुहान जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी जी। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं प्रेम साय रजवाड़े, सोमार साय रजवाड़े जी, सोमार जी और खेलवान सिंह पेगड़ा जी इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। और भी साथी आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, पवन चरिए, संजीव सुबे डाव जी, पवन चरिए, संजीव डाबे राव जी। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं मोर यारे, तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।
1: Mm-hmm.

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश हमारे भी चाहिए डाबकी रोड अकोला से। फिल्म का नाम है सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। ये भी फरमाइश का गीत है श्रोता साथियों। अकोला से जुड़ रहे हैं सुशला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर। बताना चाहूंगी और भी साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन कर रहे हैं। मास्टर विट्ठल, सुरेशमा सुरेश, परिधि शुरू से, मायरा शुरू से जी जुड़ना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र से, परभणी से रुपेश संगे, महेश प्रगेश, प्रीतेश संगे, पूरा संगे परिवार। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं, बरेली से आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनूर अंसारी जी, शमीम अंसारी, नसीन शमा अंसारी जी और परिवार के सभी सदस्यगण। अमरावती से जुड़ना चाह रहे हैं सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना गुणाने, प्रणय कुमारी प्रसिद्धि, हीरामन शिंदे, प्रतिभा पद्माकर गुणाने जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त, आगरा से सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया, वीर और अबीर जी, कानपुर से सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया, दिया चौरसिया, पीहू जी। और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। बड़ापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, धर्मेश तिवारी, अंकिता जोशी, वेदही जोशी जी। और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। श्रोता साथी जुड़ रहे धर्मेंद्र छिपा जी, हरजिंदर सिंह भाटिया जी, तुलसी मस्किन जी, राहुना कुराना जी, इरशाद अहमद, अशोक वर्मा, मूसा खान जी, राजकुमार जी, सतीश उस्मान और शमशुल कमर राही, दीपेश वर्मा, लक्ष्य सोनी जी, मुकेश कश्यप, रोहुल जी। और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन कर रहे हैं। ताजवंत अंसारी, गुलाम शाह भी रही, मेहराज जहां। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं मेरे सरकार आए हैं। आपको बताना चाहूंगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी दोस्तों कार्यक्रम फरमाइशों में, नए फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

तो साथियों, ये तो थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज के इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की इस सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज की शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को भुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे मीठी यादें, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं। इसी के बाद दोस्तों, शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी के बाद दोस्तों, अगला कार्यक्रम होगा मनोरंजक गीत कार्यक्रम। ये है साथियों पुराने और नए गीतों का ऐसा खूबसूरत संगम, जो आपके दिल को छू जाएगा और शाम को और भी यादगार बना देगा। और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे गजल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़ियां सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागड़ रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागड़ रेडियो 90.8 FM।

सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र अपने वो होते हैं जो हमें सद्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें, और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश, धर्म की हानि, वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाए।

करते हैं, सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े। परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक है। आप माता पिता हैं ना, यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी, मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी। इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है। आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूं। एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया, वो फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वो पुनः अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली, राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत मायके वापस चली गई और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। वो व्यापारी तनिक घबराया परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वो समय पर पहुंचा, उसने राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न हुए और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी, स्वर्ण आभूषण दी। जब व्यापारी घर पर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास। हर ओर प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना, दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदा

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे ही जमीन आते नाम हिरते आवे कागज केने कने बनाओ पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोलो अरे सब समस्या में समाधान आपे करने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मिलने जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लगाड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हमरो अपनावी जानकारी सबनो हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लगाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: साथियों, बप्पा की सीख हो तो बुद्धि और विवेक की राह मिले, हिंदी की शक्ति हो तो अपनी बात को पहचान मिले, नई सोच के साथ युवा आगे बढ़े, नई मंजिलों के सपने देखे, लेकिन अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को कभी न छोड़ें, क्योंकि दुनिया हमें हमारी सफलता से पहचान सकती है, लेकिन हमारी असली पहचान हमारी जड़ों से बनती है। आओ बप्पा से सीखे आगे बढ़ने का हुनर और हिंदी से पाए अपनी आवाज को पहचान देने का सामर्थ्य।
1: जी हाँ साथियों, आप सभी को वागर रेडियो परिवार की ओर से गणेश चतुर्थी और हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। जैसा कि किससे पहले आपको कुछ चंद पंक्तियां सुनाई थी, उन चंद पंक्तियों से आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस विषय को लेकर बातचीत करने वाले हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं बप्पा की भक्ति से हिंदी की शक्ति तक युवा अपनी पहचान किस तरह से जोड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: यानी कि कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि गणेश उत्सव हो या हिंदी दिवस, दोनों ही हमें अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर देते हैं। एक तरफ बप्पा हमें बुद्धि, विवेक और नई शुरुआत का संदेश देते हैं, तो दूसरी तरफ हिंदी हमें अपनी भावनाओं, विचारों और संस्कृति को अपनी सहज भाषा में व्यक्त करने की ताकत देते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम कह सकते हैं हमारे श्रोता साथियों से कि गणेश चतुर्थी हमें भगवान गणेश के माध्यम से बुद्धि, विवेक, धैर्य, विनम्रता और नई शुरुआत का संदेश देती है।
1: बिल्कुल।
0: वहीं श्रोता साथियों, हिंदी हमें अपनी बात, अपने विचार, अपनी भावनाओं और अपनी संस्कृति को व्यक्त करने की शक्ति देती है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दे पहले।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं बप्पा की भक्ति से हिंदी की शक्ति तक युवा अपनी पहचान किस तरह से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो कशिश, हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जिस भाषा में हम अपने मन की बात कह पाए वही भाषा हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है।
1: बिल्कुल।
0: भाषा केवल शब्द नहीं, हमारी सोच, संस्कार और पहचान होती है। इसी के साथ साथियों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि नई राह पर बढ़ना है तो बुद्धि का साथ चाहिए, अपनी पहचान बनानी है तो अपनी जड़ों को एहसास चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: कशिश, गणेश चतुर्थी हमें भगवान गणेश के माध्यम से बुद्धि, विवेक, धैर्य, विनम्रता और नई शुरुआत करने का संदेश देते हैं। जैसा कि गीत से पहले हमने बताया था, वही हिंदी हमें अपनी बात, अपने विचार और अपनी भावनाओं को, अपनी संस्कृति को व्यक्त करने की शक्ति देते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं साथियों कि आज का युवा तेजी से बदलती दुनिया का हिस्सा है।
0: बिल्कुल।
1: मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, नई तकनीक, नए करियर और नई भाषाएं उनके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं जागृति जी। लेकिन इन सभी चीजों के बीच एक सवाल बहुत जरूरी है कि क्या हम आगे बढ़ते हुए अपनी जड़ों को भी साथ लेकर चल रहे हैं। श्रोता साथियों, बप्पा की जो पहली सीख है वो ये है बुद्धि और विवेक।
0: बिल्कुल।
1: यानी कि भगवान गणेश को बुद्धि और विवेक का प्रतीक माना जाता है और युवाओं के जीवन में ये सीख काफी महत्वपूर्ण है जागृति जी। आज हमारे सामने ढेर सारे विकल्प हैं, इंटरनेट पर हर तरह की जानकारी उपलब्ध है।
0: बिल्कुल।
1: सोशल मीडिया पर हर दिन नई चीजें देखने को मिलती है, लेकिन हर जानकारी सही हो ये भी तो जरूरी नहीं है साथियों। ऐसे समय में युवा को केवल जानकारी नहीं बल्कि सही और गलत के बीच अंतर समझने की बुद्धि भी होनी चाहिए।
0: जी हाँ,
1: यही बप्पा की सीख है, सोचिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए।
0: बिल्कुल।
1: और यही बात हमारी भाषा से भी जुड़ती है जागृति जी। जब हम अपनी भाषा में किसी विचार को समझते हैं तो कई बार उसे अपने अनुभव और भावनाओं से जोड़ना आसान हमारे लिए हो जाता है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि गणेश उत्सव अपने साथ उत्साह और नई शुरुआत का संदेश लेकर आता है। युवा जीवन में भी हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: अगर परीक्षा में सफलता नहीं मिली है श्रोताओं, तो फिर से शुरुआत कीजिए। अगर किसी काम में असफलता मिली है तो उससे सीखिए। अगर कोई रास्ता बंद हो गया है तो नया रास्ता आप जरूर खोजिए।
1: बिल्कुल।
0: असफलता अंत नहीं है, सीखने का एक अवसर हो सकती है। और यही कारण है कशिश की युवा को अपनी पहचान बनाते समय भी डरना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, अगर आपको हिंदी में लिखना पसंद है तो आप जरूर लिखिए। अगर आपको हिंदी में बोलना पसंद है तो आप जरूर बोलिए। अगर आपको अपनी स्थानीय बोली में कहानी सुनाना पसंद है तो जरूर सुनाइए। दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी विशेषता को पहचानना ही असली आत्मविश्वास है।
1: जी हाँ जागृति जी, साथ ही बताना चाहेंगे युवा साथियों को कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं बल्कि पहचान की आवाज है।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, हमारे लिए भाषा केवल बातचीत का माध्यम नहीं है। भाषा के साथ हमारी यादें जुड़ी हुई होती है, हमारे रिश्ते जुड़ते हैं, हमारी संस्कृति जुड़ी हुई होती है, साथ ही हमारी कहानियाँ और अनुभव भी जुड़े होते हैं। बचपन में दोस्तों सुनी दादी नानी की कहानियाँ, घरों में बुजुर्गों की बातचीत, त्योहारों के गीत, गांव की कहावतें, इन सब में हमारी संस्कृति की झलक मिलती है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए हिंदी को अपनाना केवल हिंदी बोलना नहीं जागृति जी, हिंदी के माध्यम से अपनी कहानी को पहचान देना भी है।
0: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है, हम हमारे श्रोता साथियों को बता रहे हैं कि बप्पा की सीख से हिंदी की शक्ति तक युवा अपनी पहचान से कैसे जुड़ सकते हैं। तो ये बातें निरंतर आगे भी हमारे श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल। तो युवा साथियों, आइए सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातें बहुत अच्छी चल रही थी बप्पा की सीख और हिंदी की शक्ति को लेकर, यहीं आपसे बताना चाहेंगे श्रोता साथियों कि डिजिटल दुनिया में भी हिंदी की शक्ति कहीं हद तक मायने रखती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जागृति जी, आज का युवा डिजिटल दुनिया में बहुत सक्रिय है। हम अलग अलग एप्स के माध्यम से श्रोता साथियों अपनी बात को पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं।
1: जी हाँ।
0: तो ऐसे में क्यों ना साथियों, इस डिजिटल शक्ति का इस्तेमाल हम अपनी भाषा और संस्कृति के लिए भी करें। जागृति जी, कोई युवा अपने गांव के किसी बुजुर्ग का अनुभव रिकॉर्ड कर सकता है, कोई स्थानीय लोकगीतों पर वीडियो बना सकता है, कोई हिंदी में शिक्षा से जुड़ी जानकारी साझा कर सकता है, तो कोई अपनी बोली और लोक कथाओं को डिजिटल रूप में सुरक्षित भी कर सकता है।
1: जी हाँ।
0: इस तरह युवा साथियों केवल कंटेंट नहीं बनेगा, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को हम आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचा पाएंगे।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हमारे गांव और क्षेत्रों की स्थानीय बोलियों में हमारी मिट्टी की खुशबू होती है। कई बार युवा अपनी स्थानीय बोली बोलने में झिझक महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि शहर या सोशल मीडिया की भाषा ही आधुनिकता की पहचान है। इसलिए याद रखिए, आधुनिक होना अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं है। श्रोताओं, आप नई तकनीक सीख सकते हैं और अपनी बोली भी बोल सकते हैं। आप अंग्रेजी भी सीख सकते हैं और हिंदी में अपनी बात रख भी सकते हैं। आप दुनिया के साथ जोड़ सकते हैं और अपने गांव की संस्कृति को भी सम्मान दे सकते हैं। जड़ें मजबूत होगी कशिश, तभी हमारी पहचान भी मजबूत होगी।
0: बिल्कुल जागृति जी। साथ ही अगर बात करें बप्पा की सीख और युवा पहचान की, कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो दोस्तों बप्पा की सीख हमें केवल पूजा तक सीमित नहीं रखती, उसमें जीवन के कई संदेश भी छिपे हुए हैं।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि बुद्धि जो है वो हमें सही निर्णय लेना सिखाती है, विवेक हमें सही गलत की पहचान करना सिखाता है, धैर्य हमें मुश्किल समय में टिके रहना सिखाती है जागृति जी, और विनम्रता हमें सफलता के बाद भी जमीन से जुड़े रहना सिखाती है।
1: जी हाँ।
0: और बात करें नई शुरुआत की, तो साथियों नई शुरुआत हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में अगर युवा साथी इन मूल्यों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं और अपनी भाषा, संस्कृति और समाज से जुड़े रहते हैं जागृति जी, तो उनकी पहचान केवल सोशल मीडिया की पहचान नहीं रहेगी, बल्कि वह एक जिम्मेदार और जागरूक युवा की पहचान बन जाएगी।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हमारे युवा साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि साथियों, आप अपनी भाषा में बात करते वक्त झिझक मत महसूस करिए। हिंदी बोलना या लिखना पुराना विचार नहीं है, ये अपनी बात को सहजता से व्यक्त करने का माध्यम है।
0: बिल्कुल।
1: अपने क्षेत्र की बोली में हमारी संस्कृति और इतिहास की कई कहानियां छिपी होती है। इसीलिए श्रोता साथियों, आप अपने स्थानीय बोली को सम्मान दें, बुजुर्गों के अनुभव को सुने, बुजुर्गों की जीवन की कहानियां रिकॉर्ड करें और उनसे सीखें, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को बता पाएं। हिंदी में वीडियो, पॉडकास्ट, ब्लॉग, कहानियां और उपयोगी जानकारी भी तैयार करें, ताकि आप हिंदी को डिजिटल दुनिया से जोड़ सकते हैं। हिंदी से जुड़ना दूसरी भाषाओं से दूरी बनाना नहीं है दोस्तों, जितनी भाषाएं हम सीखेंगे उतने नए संसार हम समझ पाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: गणेश चतुर्थी की बात करें तो गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार को केवल उत्सव के रूप में नहीं लेना है, बल्कि उसके बारे में, उसके मूल उद्देश्य के बारे में हमें समझना है और समझाना भी है। साथ ही अपनी संस्कृति को हमें जानना है, क्योंकि लोक गीत, लोक कला, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय इतिहास के बारे में जानने की हमें कोशिश करनी है, जो आज कहीं लुप्त हो चुकी है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही सोशल मीडिया पर देखकर हर बात को सच न माने, बप्पा की सीख के अनुसार बुद्धि और विवेक से जरूर आप निर्णय लीजिए।
0: जी हाँ।
1: रेडियो, पत्रकारिता, लेखन, अनुवाद, डिजिटल कंटेंट और पॉडकास्ट

0: राष्ट्र जैसे क्षेत्रों में भाषा एक उपयोगी कौशल बन सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है श्रोता साथियों कि दूसरों की पहचान की नकल करने के बजाय अपनी प्रतिभा, अपनी भाषा और अपने अनुभव और अपने सपनों को आप जरूर पहचानिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो युवा साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि अपनी पहचान से जुड़ने के लिए कोई बड़ा काम करने की आपको जरूरत नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: आज घर में अपने किसी बुजुर्ग से उनकी बचपन की कहानी आप पूछिए, आज अपनी स्थानीय बोली का कोई शब्द लिखिए और उसका अर्थ जानिए, आज हिंदी में कोई अच्छी किताब पढ़िए साथियों, आज सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा साझा कीजिए जिसमें आपकी संस्कृति, आपका समाज या आपकी सकारात्मक सोच दिखाई दे।
0: बिल्कुल,
1: और आज अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या मैं आधुनिक दुनिया के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी जड़ों को कितना साथ लेकर चल रहा हूँ। शायद इस सवाल का जवाब ही आपकी पहचान की शुरुआत बन जाए।
0: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, तो हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों आज की बातों का सार यही है कि बप्पा हमें बुद्धि और विवेक से आगे बढ़ना सिखाते हैं और हिंदी हमें अपनी बात, अपनी पहचान के साथ कहने की शक्ति देती है।
1: बिल्कुल,
0: हमें दुनिया से जुड़ना है लेकिन अपनी जड़ों से कट कर नहीं। हमें नई तकनीक तो अपनानी है लेकिन अपनी संस्कृति को भी भूलना नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: हमें नई भाषाएं सीखनी है कशिश, लेकिन हमें अपनी भाषा को कम समझना भी नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: और हमें सफल होना है लेकिन अपनी पहचान खोकर सफल नहीं होना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: याद रखिए श्रोता साथियों, जिस युवा को अपनी जड़ों का पता होता है वही नई ऊंचाइयों पर पहुंचकर अपनी पहचान नहीं खोता। इसी सोच के साथ श्रोता साथियों बप्पा से बुद्धि, विवेक और धैर्य की सीख लें और हिंदी से अपनी आवाज और अपनी पहचान को मजबूत करें।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इन्हीं बातों के साथ अब जैसा कि कार्यक्रम में युवा साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी है और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे युवाओं को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत, आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: बिल्कुल।
0: आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो युवा साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: तू अनी माटी में जमीन है, अनी माटी तकीस जाने जाऊं हूं। मैं खेत में बारे बीज बोया तो पसे में बाहर वो मिश्रण करो तो पसे बाप दादा ने जमीन होते मारे अधिकार कीमती सूरी जन्म तकीस हकदार है। कानून ने आवाज मानी है कंपनियां पुटे तेरे हक को ले सके ना रिवाज और सच में बदली सके। बाप दादा ने जमीन सूरी ने अधिकार सूरी ने हक इन्हें पहचान।
3: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
3: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
1: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
3: होवे भाईन बोनू आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े में देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
3: होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दाल खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई बोनो, घर के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरा ने मुस्कान। होवे इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्ती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारस। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सच्चा बचपन में जब भी हम हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ता है। आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है अपनी मातृभाषा में स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि सेहत सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन अच्छी सेहत के लिए केवल भोजन ही काफी नहीं होता है, बल्कि यह समझना भी जरूरी है कि क्या खाएं, कितना खाएं और सही जानकारी हमें किस तरीके से समझ में आती है। हमारे गांव समाज में स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी बहुत सी बातें पीढ़ियों से चली आ रही है, लेकिन जब यही जानकारी हमारी अपनी मातृभाषा और स्थानीय भाषा में हमारे अपने उदाहरणों के साथ हमें समझाई जाए तो हम और भी आसानी से हमारे जीवन का हिस्सा उन्हें बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अपनी भाषा में मिली स्वास्थ्य और पोषण की सही जानकारी किस तरह हमारे परिवार और बच्चों और पूरे समुदाय के लिए बदलाव ला सकती है। बातें अवश्य हमारी आपसे रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों मैंने गीत से पहले आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी मातृभाषा में स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी हम किस तरीके से समझ सकते हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ विषय विशेषज्ञ मौजूद है, तो आइए सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं ढेर सारी बातों को, फिर हम हमारी बातें आगे जारी रखेंगे। मैम नमस्कार।
1: नमस्कार अंजलि जी।
0: मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जैसा कि मैम आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है अपनी मातृभाषा में स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी हम हमारे श्रोता साथियों को कैसे दें। तो सबसे पहले मैं आपसे कार्यक्रम में आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: जी मेरा नाम

0: स्नेहलता स्वर्णकार है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तलवाड़ा में व्याख्याता की पोस्ट पर हूँ हिंदी विषय से।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आपने आपका परिचय हमें बताया है और आज 14 सितंबर का दिन है। आज के दिन हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं और पोषण माह तो हमारा जैसा कि चल ही रहा है, तो सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि हम अपनी मातृभाषा में स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी कैसे दे सकते हैं और ये जानकारी देना क्यों जरूरी है।
0: देखिए, हम सभी जानते हैं कि जानकारी तभी उपयोगी बनती है जब वह हमें समझ में आए और मातृभाषा में कही गई बात सीधे हमारे मन को छूती है। मान लीजिए किसी माँ को यह समझाना है कि बच्चे को केवल पेट भरने के लिए नहीं भोजन देना है, बल्कि उसके भोजन में अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। अगर हम बहुत कठिन शब्दों में उसे यह पोषण समझाएंगे तो शायद वह कुछ बातें समझे और कुछ बातें भूल जाए। लेकिन अगर हम उसे अपनी भाषा में उसके घर के उदाहरण से समझाएं, आप बच्चे की थाली में दाल, रोटी, चावल के साथ सब्जी, फल और अन्य उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल कीजिए, तो बात बहुत आसानी से समझ में आएगी।
1: बिल्कुल, जैसा कि मैम आपने बताया कि किस तरीके से हमें अपनी भाषा में ही बच्चों को इन सारी चीजों के बारे में बताना है, यानी कि भाषा केवल जानकारी पहुँचाने का माध्यम नहीं है। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि क्या स्थानीय भाषा में समझाने से लोगों को जल्दी समझ में आता है।
0: हाँ, निश्चित रूप से। एक बहुत सामान्य उदाहरण ले लेते हैं। अगर हम किसी माँ से कहें कि आप बच्चे को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर डाइट दे, तो हो सकता है वह सोचने लगे कि यह बहुत कोई महंगी चीज होगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अगर हम उसी बात को अगर सरल भाषा में कहें कि बच्चे की थाली में अलग अलग रंग की सब्जियां, दालें, मौसमी फल और घर में उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल करें, तो यह बात तुरंत समझ में आ जाएगी। यही मातृभाषा की ताकत है, कठिन जानकारी को सरल बनाकर जीवन से जोड़ देना।
1: जी हाँ मैम, आपने सही कहा। यही हम देखते हैं कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पोषण जागरूकता बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में पोषण को लेकर जागरूकता की कमी देखी जाती है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है?
0: सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जागरूकता केवल भाषण देने से नहीं आएगी, बल्कि लोगों से संवाद करने से आएगी। ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम किसी परिवार से जाकर यह कहें कि आप महंगे खाद्य पदार्थ खरीद कर बच्चों को खिलाइए, तो यह व्यवहारिक सलाह नहीं होगी। इसके बजाय हमें यह देखना चाहिए कि वहाँ स्थानीय रूप से क्या उपलब्ध है और उसी से पौष्टिक भोजन की जानकारी देनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: उदाहरण के लिए, घर में उपलब्ध दालें, अनाज, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध आदि को भोजन में किस तरह शामिल किया जा सकता है, यह समझाया जा सकता है।
1: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो जैसा कि हम जान रहे हैं आपके माध्यम से कि किस तरीके से जब हम अपनी और सरल भाषा में कोई चीज किसी व्यक्ति को समझाते हैं तो किस तरीके से उसके मन को छू जाती है, यही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की इसमें क्या भूमिका है?
0: जी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधे बच्चों और परिवारों से संपर्क में रहती है, यह हम सभी जानते हैं। मान लीजिए किसी माँ को यह चिंता है कि उसका बच्चा खाना ठीक से नहीं खाता।
1: बिल्कुल।
0: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उससे बातचीत करके यह समझ सकती है कि बच्चे की दिनचर्या कैसी है, परिवार में भोजन की आदतें कैसी है और उसे किस प्रकार से उसकी जानकारी की जरूरत है।
1: बिल्कुल।
0: वे केवल जानकारी देने का काम नहीं करती, बल्कि परिवार और पोषण संबंधी सेवाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है। और यदि यही जानकारी स्थानीय भाषा में प्यार और सम्मान से दी जाए, तो उसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। यही अब बात आती है कि बच्चों को पोषण की शिक्षा किस उम्र से देनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम बच्चों को पालन पोषण में बहुत सारी चीजें देते हैं, लेकिन हमें यह समझ नहीं आता कि कब हमें कौन सी चीज देने की जरूरत होती है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: जी, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अच्छी आदतों की नींव जो है वह बचपन में ही पड़ जाती है। एक छोटा बच्चा जब हाथ धोकर खाना सीखता है तो भोजन को बर्बाद न करना सीखता है, अलग अलग खाद्य पदार्थों को पहचानता है, वहीं से उसकी पोषण शिक्षा शुरू हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: बाद में वह उसे समझाया जा सकता है कि शरीर को अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत क्यों होती है। हम इसे बहुत ही सरल तरीके से भी सिखा सकते हैं। देखो, तुम्हारी थाली में जितने रंग होंगे उतनी ही सुंदर और विविध तुम्हारी थाली होगी। इस तरीके से हम बच्चों को बचपन से ही यह सब सिखा सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आप बता रही हैं कि बचपन से ही बच्चों के अंदर हमें इन सारी चीजों को डालने की जरूरत है। रंग बिरंगी हमारी पोषण की थाली, विविधता होनी चाहिए, ताकि बचपन से जब बच्चे इन्हें देखते खाते आएंगे तो आगे चलकर वो किसी भी चीज को खाने से मना नहीं कर सकते। नहीं क्या कहानियां और खेल के माध्यम से भी पोषण सिखाया जा सकता है?
0: हाँ अंजलि जी, क्योंकि आप और मैं हम सभी जानते हैं कि कहानियां और खेल बच्चों को बेहद पसंद होते हैं। और अगर हम किसी बच्चे से कहें चलो हरी सब्जी खाओ ये तुम्हारे लिए अच्छी है, तो बच्चा मुंह बना लेगा।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अगर हम कहें कि आज तुम्हारी थाली में पालक आया है, जानते हो यह शरीर का कौन सा दोस्त है, अब बच्चा उत्सुक होगा। हम खाद्य पदार्थों को पात्र बनाकर कहानी बना सकते हैं, जैसे कि दाल को शरीर की ताकत का दोस्त, फल सब्जियों को रंग बिरंगे साथी और पानी को शरीर का जरूरी साथी बनाकर। इस तरह से खेल बनाया जा सकता है, जैसे कि हम बच्चों को क्या करें कि खाद्य पदार्थों के चित्र दे दें और बोले चलो आज मिलकर एक संतुलित थाली सजाते हैं। और जब शिक्षा खेल बन जाती है तो बच्चा उसे बोझ नहीं समझता।
1: जी हाँ, यही अब जानना चाहूंगी मैम मैं आपके माध्यम से कि परिवार में माता पिता की इन सारी चीजों को लेकर क्या जिम्मेदारी बनती है, माता पिता बच्चों के अंदर इन आदतों को कैसे विकसित कर सकते हैं?
0: इस बारे में तो मैं यही कहूंगी कि सबसे अच्छा तरीका है उन्हें स्वयं करके सिखाना। अक्सर हम देखते हैं कि हम बच्चों को कहते हैं कि सब्जी खाओ, फल खाओ, मोबाइल नहीं देखो, और यदि वही बच्चे माता पिता को सब्जियों को अवॉइड करते हुए देखें या माता पिता को मोबाइल देखते हुए देखें, तो आप ही बताइए कि वह अपने माता पिता को फॉलो कैसे कर पाएंगे। जब तक बच्चा आपको वही करते हुए नहीं देखेगा तब तक वह स्वयं भी उसे नहीं करेगा। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि डांटना किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, न ही भाषण देना। हमें बच्चों को धैर्य के साथ नए खाद्य पदार्थों से परिचित कराना और परिवार में स्वस्थ भोजन का माहौल बनाना अधिक उपयोगी होगा।
1: बिल्कुल, तो क्या मैम गलत धारणाएं पोषण में बाधा बन सकती है?
0: हाँ अंजलि जी, बन सकती है। हमारे समाज में कई बातें पीढ़ियों से चली आ रही है, इनमें से कुछ परंपराएं उपयोगी हो सकती है, लेकिन हर धारणा वैज्ञानिक रूप से सही हो यह जरूरी तो नहीं। उदाहरण के लिए किसी खाद्य पदार्थ को बिना उचित कारण पूरी तरह छोड़ देना या बीमारी के समय जरूरी भोजन से भी बच्चों को दूर रखना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और हमें यह वैज्ञानिक तरीके से भी सोच कर उस बात का निर्णय लेना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें उन धारणाओं का मजाक उड़ाना चाहिए, पर हाँ यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि जागरूकता का मतलब केवल सही बात बताना नहीं बल्कि गलत बात को सम्मान पूर्वक सही करना भी है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी से हमें अवगत करवा रही हैं, पोषण माह को लेकर आप क्या संदेश हमारे श्रोता साथियों को देना चाहेंगी?
0: मेरे विचार से इसका सबसे बड़ा संदेश यही होगा कि पोषण केवल किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है अंजलि जी। हाँ, यह हम सब की जिम्मेदारी है, जैसे कि माँ बाप, परिवार, विद्यालय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, समाज, सभी की भूमिका है इसमें।
1: बिल्कुल,
0: और हमें यह भी समझना चाहिए कि पोषण केवल पेट भरने का नाम नहीं है, उसका संबंध सीधा हमारे शरीर के विकास से है और हमारी कार्य क्षमता और हमारे स्वस्थ भविष्य से है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए यह पोषण माह हमें यह याद दिलाता है कि हमें केवल एक महीने नहीं बल्कि हर दिन अपनी थाली और अपनी आदतों के प्रति सजग रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आप एक टीचर भी हैं और आप बच्चों के अंदर कई सारी ऐसी चीजें स्कूल में रहकर देखती होंगी और आपको लगता भी होगा कि ये चीज में बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसको लेकर आप अभिभावकों को क्या सलाह देना चाहेंगी?
0: मैं अभिभावकों से कहना चाहती हूँ कि बच्चे के लिए सबसे बड़ा उपहार केवल अच्छी शिक्षा या अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। इसलिए बच्चों के भोजन पर ध्यान दें, घर में उपलब्ध विविध खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करने की कोशिश करें, और सबसे बड़ी बात मौसमी और खाद्य पदार्थों को महत्व दें, और जब घर में भोजन कर रहे हो तब घर का वातावरण सकारात्मक रखें, शांत रखें, इससे क्या है, बच्चों के स्वास्थ्य, उनके विकास पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि आज मैम कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें रही है कि किस तरीके से हम पोषण को लेकर बच्चों को अपनी मातृभाषा में ढेर सारी जानकारी सरल भाषा में किस तरीके से समझा सकते हैं, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि पोषण को लेकर जो हम स्तनपान सप्ताह भी मनाते हैं, पोषण माह पूरा मना रहे हैं, ये दिवस हमें मनाने की जरूरत ही ना पड़े, लोग स्वतः ही इसको लेकर जागरूक हो जाएं।
0: जी जरूर, मैं अपने सभी श्रोता साथियों से ये कहना चाहती हूँ कि पोषण की शुरुआत किसी बड़े अभियान से नहीं, हमें अपने घर से करनी होती है। इसकी शुरुआत हमारी रसोई से होती है और सबसे बड़ी बात हमारी थाली से और हमारी सोच से। अपने बच्चों को केवल यह मत समझाइए कि उन्हें क्या खाना है, उन्हें यह भी समझाइए कि क्यों खाना है।
1: बिल्कुल।
0: और यह समझाते समय उनकी भाषा बोलिए, उनके उदाहरण दीजिए, उनकी दुनिया से जुड़िए, कहानियों के माध्यम से समझाइए, क्योंकि जब स्वास्थ्य की बात हमारी अपनी भाषा में कही जाती है तो वह केवल जानकारी नहीं रहती, वह समझ बनती है। और जब यह समझ आदत बन जाती है तो वही आदत एक स्वस्थ परिवार, एक स्वस्थ समाज की नींव रखती है। तो आइए इस पोषण माह में हम एक छोटा सा संकल्प ले, सही जानकारी पाएंगे, अपनी भाषा में समझेंगे और अपने परिवार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि स्वस्थ बचपन, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज, इसी से तो बनेगा हमारा स्वस्थ भविष्य।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आपने बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम में बहुत ही सरल तरीके से बताई है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी श्रोताओं से यही आग्रह है कि स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और पोषण की जानकारी अपने परिवार तक जरूर पहुंचाइए।
1: श्रोता साथियों, आज की बातचीत से एक बात बिल्कुल साफ है, स्वास्थ्य और पोषण की सही जानकारी तभी ज्यादा असरदार बनती है जब वह हमारी समझ की भाषा में हम तक पहुंचे। हमारी मातृभाषा केवल बातचीत का माध्यम नहीं है बल्कि हमारे अनुभव, हमारी संस्कृति और हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। इसलिए जब पोषण की बात हमारी अपनी भाषा में होती है तो उसे समझना, याद रखना और परिवार तक पहुंचाना आसान हो जाता है। हम ये कोशिश करें श्रोता साथियों कि हमारे घर का कोई भी सदस्य केवल इसलिए सही स्वास्थ्य जानकारी से वंचित न रहे कि उसे कठिन भाषा में समझाया गया। सरल भाषा में सही जानकारी से सही समझ और सही समझ से स्वस्थ परिवार, इसी संदेश के साथ अब हम कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि घड़ी की जो टिक टिक करती हुई सुई है वो हमें अब इशारा कर रही है कि अब हमारे कार्यक्रम से जाने का समय भी हो गया है और श्रोता साथियों के एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन का समय है। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमारा वारा हंग्र भाई बनो ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हम रेडियो हो आपणो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो गणमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बोनो अमे अमारे टेम माते हाजिर थे जह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लीने एक ना विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज अमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय

है कि आपड़े पौधों में पोषक तत्व की कमी ना हो कारण है ने समाधान ना हो उपाय थी सके। तो बहन मोनो अणा विषय माते कार्यक्रम खेती वाड़ी में हमारी अब तक की घना कनी बातें थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू कर एने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपड़ी बातें। तो भाई बोनो आप हमर तरह सु आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: तना पतला और कमजोर हो जाता है उसका, और फसल का जो रंग है हल्का सा हरा दिखाई देता है, तो अपन को खेत में जाते हैं तुरंत पता चल जाता है कि इसके अंदर या बढ़वार नहीं हो रही है, पीले पड़ रहे हैं, तो तुरंत किसान खाद डालने का प्रयास करता है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये सब उसकी नाइट्रोजन की कमी है। तो अब साथ में अपन नाइट्रोजन की जो कमी है उसका साथ में यदि अपन देखें कि उसका समाधान भी यदि देख ले, कि भी यदि नाइट्रोजन की कमी हो इस तरह के यदि उसकी पहचान है तो फिर उसका समाधान अपन क्या करें।
1: जी जी,
0: तो एक तो अपन ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो खास करके जो उकेड़ा वाली खाद है, गोबर की सड़ी हुई जो खाद है, एक तो उसका प्रयोग करें। वर्मी कंपोस्ट की अपन बार बार अपने रेडियो के माध्यम से बात करते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं।
1: जी जी,
0: कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं, घन जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जो चीज है इसके अंदर, यदि दलहनी फसल चक्र शामिल यदि किया जाए इसके अंदर
1: जी जी,
0: तो वो ये जो पहचान बताई थी ना नाइट्रोजन की कमी की, वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगी।
1: जी जी,
0: तो यदि अनाज जैसे मक्का है, मक्के के साथ यदि दलहनी वर्ग तुअर उड़द मूंग यदि डाल दिया जाए तो ये नाइट्रोजन ऑटोमेटिक उसकी जड़ से वो ले लेता है।
1: जी जी बिल्कुल,
0: ये उसकी मतलब समाधान प्रक्रिया ये है। इसकी दृष्टि से अपन आगे फास्फोरस की कमी है तो उसकी पहचान क्या है।
1: बिल्कुल,
0: तो फास्फोरस की यदि कमी है तो पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है ना, बिल्कुल बंद नहीं होती है, जड़ें कमजोर हो जाती है, पत्तियों में बैंगनी और गहरा रंग दिखाई देता है।
1: बिल्कुल,
0: ये फास्फोरस यदि कमी है तो पत्तियों में बैंगनी और गहरा रंग दिखाई देता है, फूल और फल कम आते हैं, इसके अंदर जो प्रोडक्शन आना चाहिए, उत्पादन आना चाहिए, वो कम आ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये फास्फोरस को अपन को उसकी जो पूर्ति करनी है तो खास करके इसके अंदर पीएसबी जीवाणु जिसको बोलते हैं है ना, घुलनशील जीवाणु, पीएसबी जीवाणु का उपयोग किया जाता है। एक महत्वपूर्ण चीज जो, यदि फास्फोरस आपके खेतों के अंदर कमी नहीं रखनी है तो जैसे हड्डी का चूरा है, तो हड्डी को आप कोई फल है आपका और इसमें फास्फोरस की कमी दिखाई दे रही है, कोई फ्रूट बराबर नहीं अंदर आ रहे हैं, तो हड्डी का टुकड़ा करके गड्ढा करके आप चारों तरफ डाल दीजिए तो वो फास्फोरस की कमी बिल्कुल उसकी खत्म हो जाएगी और फल चालू हो जाएगा। तो ये फास्फोरस का इसका आप समाधान
1: कर सकते हैं। बिल्कुल सर,
0: उसका मेन जो पोषक तत्व तीसरा जो बचा है वो पोटाश है। नाइट्रोजन की बात हो गई, फास्फोरस की बात हो गई, और पोटाश की अपन बात करें तो उसकी जो पहचान है पूरा कलर आ जाता है पत्तियों की जो किनारी है वहां पर, और पौधा कमजोर हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और रोग एवं सूखे प्रभाव से अधिक दिखाई देता है, बीमारी लग जाती है, रोग लग जाता है, सूखा हो जाता है, तो ये पोटाश की कमी है।
1: बिल्कुल,
0: तो एक तो इसके अंदर यदि अपन देशी बात करें, जैविक की बात करें, तो लकड़ी की जो राख है इसका यदि प्रयोग करेंगे तो पोटाश उसकी मात्रा पूर्ण होती है।
1: जी जी,
0: और खास करके जो जैविक खाद है अपना, वो जैविक खाद की यदि डालेंगे तो भी पोटाश की पूर्ति हो जाती है। तो ये चीज उसका समाधान की अपन बात करते हैं, खास तीसरा जो अपना जो पोषक तत्व था पोटाश, उसकी पहचान और समाधान की अपन ने बात की।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और किस तरीके से इन पोषक तत्वों की कमी होने पर हम समाधान के उपाय कर सकते हैं, तो सर और भी कोई पोषक तत्व हैं जिसकी कमी की पहचान हमें करनी चाहिए और समाधान के उपाय हमें करने होंगे?
0: बिल्कुल, इसमें बहुत सारे हैं, जैसे जिंक की बात करें, जो अपन सूक्ष्म पोषक तत्व की बात की थी ना, तो इसमें जो जिंक की बात करें तो नई पत्तियां छोटी रह जाती है, पत्तियों में धारियां दिखाई देती है, मक्का और धान में यह समस्या अधिक दिखाई देती है यदि जिंक की कमी रही तो।
1: बिल्कुल,
0: है ना, तो जिंक सल्फेट का उपयोग करने का एक तो है ना, जैविक पदार्थों का जितनी मात्रा में आप बढ़ाएंगे, खास करके यदि जैविक खाद जो अपन जितने बढ़ाएंगे तो जिंक की प्रॉब्लम लगभग नहीं रहती है।
1: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आपने हमें बताया कि कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि इसका प्रभाव हमारी फसल पर कैसे पड़ता है और क्या नुकसान हमारे किसान भाई बहनों को झेलना पड़ता है।
0: बिल्कुल, फसल पर तो जैसे मैंने बताया बहुत प्रभाव आपको दिखाई देता है। एक तो किसान के अंदर उसकी जो उत्पादन क्षमता घट जाती है, पूरा उत्पादन नहीं ले पाता है। दूसरी चीज, यदि बीमारी लग गई तो इधर पोषक तत्व की कमी है लेकिन दूसरा खर्चा वो दवाई में ज्यादा डाल देगा।
1: बिल्कुल,
0: जिसकी कोई असर नहीं होगी क्योंकि जो बीमारी लग रही है वो पौधों को पोषक तत्व की कमी के कारण हो रही है
1: जी सर।
0: तो जितना हो सके शुरुआत में अपने खेत के अंदर पूर्ता पोषक तत्व वाला खाद, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि उकड़ा वाला खाद, वर्मी कम्पोस्ट, जीवामृत, गण जीवामृत, यदि इसका उपयोग किया जाए तो पोषक तत्व की कमी कम रहती है और किसान की जो आय जो घट होती है वो नहीं होती और आमदनी उसकी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने हमें कार्यक्रम में बहुत अच्छे तरीके से ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, तो अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: अंत में मैं एक श्रोता साथियों को बताऊं, उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो खास करके पोषक तत्व डायरेक्ट यदि अपन सीधे खेत के अंदर जाके जो पोषक तत्व देखेंगे तो हो सकता है पता नहीं चले, लेकिन यदि आपके खेत के अंदर मिट्टी परीक्षण यदि करवाई जाए तो मिट्टी परीक्षण से पता चल जाता है कि मेरे खेत के अंदर कौन से पोषक तत्व की कमी है।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: उसके आधार पर यदि आप यदि खाद की मात्रा अपने खेत में डालेंगे तो ज्यादा किसान फायदेमंद रहेगा और इसका लाभ ले सकता है, क्योंकि आजकल नई टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ गई है तो उसका किसान भाई को उपयोग करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि मैं यूरिया डालता रहूंगा, डीएपी डालता रहूंगा और मुझे खाद मिल जाएगा पोषक पूर्ता प्रमाण में, तो वो नहीं करना है। मिट्टी का परीक्षण करके अपना जो जैविक खाद है, गोबर का खाद है, उसका उपयोग करना है।
1: बिल्कुल सर।
0: और विशेष तौर पे फसल का विविधीकरण अपनाना है ना, ये महत्वपूर्ण चीज है। और मल्चिंग करें, मल्चिंग का भी इसमें काफी अच्छा है। देसी बीज एवं जलवायु अनुकूल खेती अपनाना है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये अपना पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। अंत में मैं किसानों के लिए महत्वपूर्ण जो संदेश देना चाहूंगा कि खेत में यदि पौधों का रंग बदल रहा है, वृद्धि रुक रही है या पत्तियों पर असामान्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसे केवल रोग न समझे। जैसा मैंने बताया यह पोषक तत्व की कमी का संकेत भी हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: सही समय पर पहचान और उचित पोषण प्रबंधन से फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, लागत कम की जा सकती है और मिट्टी की उर्वरता भी लंबे समय तक बनाए रखी जा सकती है।
1: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को बहुत ही प्यारा सा संदेश दिया है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: માઇન બોનું સિમકે આપણે આપણા વાસમે પટેલજી જોડે તક હતા ને એણે આપણાને ઘણી અસલ તરીકા થકી ઘણા આકાની વાતે વતાડી હૈ। આશા કરા હો કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમકે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હૈ આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું। તો સૂટા તો પડા પણ સાથે પહેલા હમરી લાયક ઓર ગીત ને મોરે પડા સૂટા।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: सेहत नु राज हूं है बोन असल आदत ने सही खुराक है बोन जिंदगी पर बात की शुरुआत पानी तकी करो थोड़ू सी व्यायाम ने तात्कालिक में जीवन जीवा फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह
1: ओवे सेहत है असली धन आपरू आज जीवन नो सहारो है आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा
3: होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
0: भाई ने बोलो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह यहाँ आपड़े नी कितनी शांति मिले है जमी हवा में आपड़े हाल हाँ ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचा रंगा ने आपड़े धरती ने जीवन दान आलंगा
3: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो
0: होवे आज नाना ना कदम है ई अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: साथियों आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी जिम्मेदारी को लेकर।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, किसी इंसान की पहचान केवल उसके नाम से नहीं होती, उसकी असली पहचान उसकी भाषा, उसके संस्कार और उसकी संस्कृति से होती है।
0: बिल्कुल,
1: जिस भाषा में हमने पहली बार माँ को पुकारा, जिस संस्कृति ने हमें बड़ों का सम्मान करना और छोटों से प्रेम करना सिखाया, वो केवल हमारी विरासत नहीं हमारी जिम्मेदारी भी है।
0: बिल्कुल,
1: अगर हम अपनी भाषा और संस्कृति को संभालेंगे श्रोताओं, तभी आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ पाएंगी।
0: बिल्कुल, तो आज जागृति जी हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहने वाली हैं। लेकिन क्यों ना कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी जिम्मेदारी को लेकर।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, किसी भी व्यक्ति की पहचान केवल उसके नाम, पहनावे या स्थान से नहीं होती, उसकी असली पहचान उसकी भाषा, संस्कृति, संस्कार और जीवन मूल्यों से होती है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, जिस भाषा में हम पहली बार अपने माता पिता को पुकारते हैं, जिस बोली में दादी नानी हमें कहानियां सुनाती है, जिस संस्कृति में हम त्योहार मनाते हैं और जिस परंपरा से हम मिलजुल कर रहने की सीख मिलती है, वही हमारी जड़ों की पहचान होती है। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। तकनीक ने देशों और समाज की दूरियों को कम कर दिया है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमें दुनिया के किसी भी कोने से जोड़ दिया है। यह बदलाव, जागृति जी, हमारे लिए अवसर लेकर आया है, लेकिन इसके साथ ही एक चुनौती भी है।
0: बिल्कुल।
1: कहीं आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी भाषा और संस्कृति को तो पीछे न छोड़ दें, क्योंकि श्रोता साथियों, अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़ना पिछड़ापन नहीं है, बल्कि अपने जड़ों को समझते हुए नई दुनिया को अपनाना ही सच्ची प्रगति है। हमें दूसरी भाषाएं सीखनी चाहिए, नई तकनीक अपनानी चाहिए और दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा, अपनी लोक परंपराओं और अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भूलना नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि भाषा हमारे विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। भाषा के माध्यम से हम अपने अनुभव दूसरों तक पहुंचाते हैं, लेकिन भाषा की भूमिका इससे कहीं बड़ी है।
1: जी हाँ।
0: किसी समाज की भाषा में उसकी जीवन शैली, इतिहास, लोक ज्ञान, परंपराएं और भावना छिपी होती है। मातृभाषा वो भाषा है श्रोताओं, जिसे बच्चा अपने आसपास के वातावरण से सहज रूप से सीखता है।
1: बिल्कुल।
0: माँ की लूरी, परिवार की बातचीत, गांव की कहावतें और बुजुर्गों की सीख, अंजलि, ये सब भाषा के माध्यम से ही अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। इसीलिए अपनी भाषा को सम्मान देना श्रोताओं, अपने इतिहास और अपनी पहचान को सम्मान देना है।
1: जी हाँ।
0: आज हम देखते हैं कि कई युवा पढ़ाई और रोजगार के लिए दूसरी भाषाएं सीख रहे हैं, अंजलि, ये अच्छी बात है। अंग्रेजी अन्य भाषाओं का ज्ञान हमें व्यापक अवसर देता है श्रोताओं, लेकिन दूसरी भाषा सीखने के लिए अपनी भाषा को भूल जाना आवश्यक नहीं है। हम कई भाषाएं सीख सकते हैं और फिर अपनी मातृभाषा से गहराई से जुड़ सकते हैं। दूसरी भाषा सीखना विकास है, लेकिन अपनी भाषा भूल जाना अपनी जड़ों से दूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात आती है, संस्कृति हमारी पहचान है। जी हाँ दोस्तों, संस्कृति किसी एक दिन या किसी एक त्योहार का नाम नहीं है। संस्कृति हमारे पूरे जीवन का हिस्सा है। हमारा खान पान, पहनावा, लोकगीत, लोक नृत्य, त्योहार, मेले, कला, साहित्य, पारंपरिक ज्ञान, परिवार के संस्कार और समाज में एक दूसरे के प्रति, इन सब का मिला जुला रूप संस्कृति कहलाता है। हमारे गाँव में आज भी कई ऐसी परंपराएं हैं जागृति जी, जो लोगों को आपस में जोड़ती है।
0: बिल्कुल।
1: त्योहारों पर एक दूसरे के घर जाना, सामूहिक रूप से आयोजन करना, जरूरत के समय पड़ोसी की मदद करना और बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी सामाजिक संस्कृति की खूबसूरत मिसालें हैं। राजस्थान जैसे प्रदेश की बात करें तो यहाँ की लोक भाषाएं, लोक गीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प, पारंपरिक खान पान और लोक कथाएं इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह भारत के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग पहचान है, अलग अलग भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं, वे सभी मिलकर भारत की विविधता को सुंदर बनाती हैं।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान ये है कि वो हमें केवल परंपराएं नहीं देती, बल्कि जीवन जीने के मूल्य भी सिखाती है। हमारी अच्छी सांस्कृतिक परंपराएं हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाती है, जैसा कि अभी आपने बताया था, छोटों से प्रेम करना, अतिथि का सम्मान करना, प्रकृति की रक्षा करना, मिलजुल कर रहना, जरूरतमंद की सहायता करना, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना, ये सारे मूल्य वो हमें सिखाती है। इसीलिए संस्कृति को केवल पुराने रीति रिवाजों के रूप में देखना उचित नहीं है श्रोताओं, हमें उसकी आत्मा को समझना होगा। कई बार ये सवाल उठता है अंजलि कि आधुनिक युग में पुरानी संस्कृति की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर है श्रोताओं, आधुनिकता और संस्कृति एक दूसरे की विरोधी नहीं है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम स्मार्टफोन का उपयोग कर सकते हैं और अपनी मातृभाषा में भी बात कर सकते हैं। हम आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही अपनी लोक कथाओं को भी पढ़ सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हम नई तकनीक सीख सकते हैं और अपने पारंपरिक ज्ञान का सम्मान भी कर सकते हैं। समय के साथ बदलाव जरूरी है श्रोता साथियों, समाज में ऐसी परंपराएं भी हो सकती हैं जिनमें सुधार किया जाना चाहिए। इसलिए संस्कृति को आंख बंद करके अपनाना नहीं, बल्कि समझकर आगे बढ़ाना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: जो परंपराएं मानवता, समानता, सहयोग, प्रकृति सम्मान और प्रेम का संदेश देती है, उन्हें मजबूत करना चाहिए। जो बातें भेदभाव या अन्याय को बढ़ावा देती है, उनमें सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए, यही जीवन संस्कृति की पहचान है।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं अपनी भाषा अपनी संस्कृति को लेकर, तो ये बातें निरंतर आगे भी बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।
2: छुप

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत कर रहे हैं, यही बात करें युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है अपनी भाषा को लेकर, तो श्रोता साथियों, आज के युवा संस्कृति के सबसे बड़े महत्वपूर्ण वाहक है। युवा जिस भाषा में बात करेंगे, जिस तरह की सामग्री सोशल मीडिया पर साझा करेंगे और जिन परंपराओं को अपनाएंगे, उसी से भविष्य की संस्कृति दिशा तय होगी।
1: बिल्कुल,
0: युवा अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए कई छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। वे अपनी मातृभाषा में कहानियां लिख सकते हैं, लोकगीत रिकॉर्ड कर सकते हैं, बुजुर्गों से लोक कथाएं सुन सकते हैं, स्थानीय इतिहास को समझ सकते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी संस्कृति से जुड़ी सकारात्मक जानकारी साझा कर सकते हैं। अगर जागृति जी, किसी गांव की कोई पुरानी कहानी, लोकगीत या पारंपरिक कला केवल बुजुर्ग तक सीमित है, तो युवा उसे रिकॉर्ड करके आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह तकनीक संस्कृति के लिए खतरा नहीं बल्कि संस्कृति को बचाने का माध्यम भी बन सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को लेकर, तो आपने बताया कि युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: नहीं अगर परिवार की भूमिका को लेकर हमारे श्रोता साथियों से हम बात करें, तो साथियों, भाषा और संस्कृति की पहली पाठशाला परिवार होता है। बच्चा सबसे पहले परिवार से भाषा सीखता है और परिवार के व्यवहार से संस्कार सीखता है। अगर घर में बच्चे से अपनी मातृभाषा में बातचीत होती है, उसे परिवार की कहानियां सुनाई जाती है और त्योहार के पीछे छिपे संदेश बताए जाएंगे, तो वो अपनी संस्कृति से स्वाभाविक रूप से जुड़ पाएगा।
0: जी हाँ,
1: माता पिता और दादा दादी बच्चों को अपने बचपन की कहानियां, गांव की परंपराएं और परिवार की पुरानी यादें बता सकते हैं। इससे बच्चों को अपने इतिहास और अपनी जड़ों को समझने का अवसर मिलता है। हमें ये भी समझना होगा श्रोताओं कि बच्चों पर संस्कृति थोपने की बजाय उन्हें उसके पीछे का अर्थ समझाना और अधिक प्रभावी होता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हमारे बुजुर्ग केवल परिवार के वरिष्ठ सदस्य नहीं है, वे अनुभव और लोक ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
1: बिल्कुल,
0: उनके पास गांव की पुरानी कहानियां, लोकगीत, कहावतें, पारंपरिक खेती का ज्ञान, मौसम की समझ और सामाजिक जीवन के अनेक अनुभव होते हैं। आज जब श्रोता साथियों बहुत सी चीजें डिजिटल रूप में सुरक्षित की जा रही है, तब हमें अपने बुजुर्गों के अनुभव को भी सुरक्षित करना चाहिए। एक युवा अपने दादा दादी या गांव के किसी बुजुर्ग से बातचीत करके उनकी कहानी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनसे स्थानीय इतिहास पूछ सकते हैं और पुराने गीतों को और कहावतों का अर्थ जान सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यह छोटा सा प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी विरासत बन सकता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हमारी संस्कृति को जीवित रखने में स्थानीय कलाकार और कारीगरों की बड़ी भूमिका होती है। लोक गायक, लोक नर्तक, हस्तशिल्पकार, बुनकर, मिट्टी के कारीगर और पारंपरिक कला से जुड़े लोग हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक हैं। यदि हम उनकी कला को जागृति से महत्व देंगे, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करेंगे और नई पीढ़ी को इन कलाओं से परिचित कराएंगे, तो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं आगे बढ़ेंगी।
1: बिल्कुल,
0: सिर्फ किसी मेले में लोक कला देखकर खुश होना पर्याप्त नहीं है, उसके पीछे मेहनत करने वाले कलाकार का सम्मान और सहयोग भी जरूरी है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि गांव में संस्कृति जीवन का हिस्सा होती है। खेत, त्योहार, मेले, लोकगीत, सामूहिक श्रम और सामाजिक सहयोग, इन सब का गहरा संबंध ग्रामीण जीवन से है। गांव की मजबूत पहचान तभी बनी रह सकती है जब वहाँ के लोग अपनी भाषा, स्थानीय ज्ञान और सामाजिक परंपराओं को सम्मान देंगे। लेकिन गांव की संस्कृति को बचाने का अर्थ ये नहीं है श्रोता साथियों कि गांव विकास से दूर रहे। गांव में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, डिजिटल तकनीक, रोजगार और आधुनिक कृषि पद्धतियां भी जरूरी है। हमें ऐसा गांव बनाना है जो आधुनिक भी हो और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ भी हो।
0: जी हाँ,
1: साथ ही आज मोबाइल और इंटरनेट हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, ये हम सभी जानते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ ही मिनटों में कोई विचार हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। इसका सकारात्मक उपयोग करके हम अपनी संस्कृति को नई पहचान दे सकते हैं अंजलि। युवा अपनी मातृभाषा में वीडियो बना सकते हैं, स्थानीय इतिहास बता सकते हैं, लोकगीत साझा कर सकते हैं, पारंपरिक व्यंजनों की जानकारी दे सकते हैं और अपने क्षेत्र की कला को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इससे स्थानीय संस्कृति केवल गांव या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि व्यापक स्तर पर पहचान बना सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, अपनी भाषा का सम्मान करने के लिए हमें बड़े अभियान की आवश्यकता नहीं है, छोटे कदम ही पर्याप्त है। घर में मातृभाषा में बातचीत करें, बच्चों को स्थानीय कहानियां सुनाएं, मातृभाषा में पुस्तकें पढ़ें, स्थानीय लोकगीतों और साहित्य को प्रोत्साहित करें, अपनी भाषा में लिखने और बोलने में संकोच न करें, डिजिटल माध्यमों पर अपनी भाषा के अच्छे कंटेंट को बढ़ावा दें। भाषा तभी जीवित रहती है श्रोता साथियों जब इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन में होता है। श्रोता साथियों, हम अक्सर कहते हैं कि सरकार को संस्कृति बचाने के लिए काम करना चाहिए। सरकार और संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन संस्कृति की रक्षा केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है, संस्कृति की पहली जिम्मेदारी समाज की और हर व्यक्ति की है। अगर हम अपनी भाषा बोलेंगे नहीं, अपने लोकगीत सुनेंगे नहीं, स्थानीय कलाकारों का सम्मान नहीं करेंगे और बच्चों को अपनी परंपराओं से परिचित नहीं कराएंगे तो केवल किताबों में संस्कृति को सुरक्षित रखना पर्याप्त नहीं होगा।
1: बिल्कुल,
0: हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि भारतीय संस्कृति में प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना लंबे समय से दिखाई देती है। हम देखते हैं कि अगर हम सच में अपनी भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं श्रोता साथियों, तो हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। घर में ही अपनी मातृभाषा का सम्मान करना है, बच्चों को अपनी लोक कथा और परंपरा बतानी है, स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को प्रोत्साहित करना है, अपनी भाषा में पढ़ने और लिखने की आदत विकसित करनी है, साथ ही डिजिटल माध्यमों पर सकारात्मक सांस्कृतिक सामग्री साझा करनी है, अच्छी परंपराओं को आगे बढ़ाना है और आवश्यक सुधार को स्वीकार करना है।
0: बिल्कुल,
1: अपनी संस्कृति के साथ साथ दूसरी संस्कृतियों का भी सम्मान करना है, प्रकृति और स्थानीय संसाधनों की रक्षा भी करनी है। ये छोटी छोटी बातें अगर हम हमारे जीवन में उतारेंगे तो हम अपनी भाषा को अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रख सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, हमें यह समझना होगा कि भाषा केवल शब्द नहीं, संस्कृति केवल परंपरा नहीं और जिम्मेदारी केवल एक शब्द नहीं है। ये तीनों हमारी पहचान और हमारे भविष्य से जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल,
0: अगर भाषा जीवित रहेगी तो हमारी कहानियाँ जीवित रहेंगी, अगर संस्कृति जीवित रहेगी तो हमारी पहचान जीवित रहेगी, और अगर हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो ये विरासत आगे आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचेगी। हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है लेकिन अपनी जड़ों को छोड़कर नहीं। हमें आधुनिक बनना है लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं।
1: बिल्कुल,
0: हमें नई भाषा सीखनी है लेकिन अपनी मातृभाषा भूलकर नहीं। इसलिए श्रोता साथियों, आज के दिन हम सभी इस बात को माने कि अपनी भाषा को सम्मान देंगे, अपनी संस्कृति को समझेंगे और अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे, क्योंकि जड़ों से जुड़ा इंसान ही ऊंचाइयों तक मजबूती से पहुंच सकता है। अपनी भाषा हमारी आवाज, अपनी संस्कृति हमारी पहचान और इसे आगे बढ़ाने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी।
1: जी हाँ, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब देख पा रहे हैं कि समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, बेशी अनाज तकी ना तू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में और एक ऐसे विषय पर विशेष चर्चा के साथ में जो हमारे जीवन के हर पल से जुड़ा है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, खाना बनाने से लेकर शरीर को स्वस्थ रखने तक, बच्चों की देखभाल से लेकर खेती और पशुपालन तक, हर जगह पानी की जरूरत होती है। लेकिन साथियों, क्या केवल पानी मिल जाना ही काफी है? क्या हम जो पानी पी रहे हैं वह वास्तव में स्वच्छ और सुरक्षित है? क्योंकि कहा गया है कि जल है तो जीवन है, स्वच्छ जल है तो स्वस्थ जीवन है। आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है स्वस्थ पानी, अच्छे स्वास्थ्य की पहली जरूरत को लेकर।
0: जी हाँ।

0: अंजलि जी, तो इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं स्वच्छ पानी अच्छे स्वास्थ्य की पहली जरूरत को लेकर। अंजलि जी, हम देखते हैं कि पानी हमारे जीवन की जरूरी चीजों में से एक है। इंसान भोजन के बिना श्रोता साथियों कुछ समय तक रह सकता है, लेकिन पानी के बिना जीवन की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। हमारे शरीर का बड़ा हिस्सा पानी से बना है। शरीर के लगभग श्रोता साथियों हर काम है वो पानी की जरूरत से होते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, पानी केवल प्यास बुझाने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य की नींव भी है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम सभी जानते हैं कि हम भोजन के बिना कुछ समय के लिए रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना लंबे समय तक जीवित रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए पानी को केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं समझना है, बल्कि पानी हमारे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आधार है। लेकिन आज सबसे बड़ी चुनौती केवल पानी की कमी की नहीं, बल्कि स्वच्छ पानी की उपलब्धता भी है। कई बार हमें पानी देखने में बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन उसमें ऐसे कीटाणु और सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जिन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यही अदृश्य कीटाणु कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि साफ दिखने वाला हर पानी सुरक्षित हो यह जरूरी नहीं। जब पानी गंदा होता है, जब उसमें कीटाणु मिल जाते हैं, तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन सकता है। दूषित पानी पीने से हम देखते हैं कि कई बीमारियां होती है, जैसे कि दस्त, डायरिया, उल्टी, पेट दर्द, हैजा, टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारी, पेट में संक्रमण, बच्चों में कमजोरी और कुपोषण की समस्या। श्रोता साथियों, विशेष रूप से छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों पर दूषित पानी का असर जल्दी पड़ सकता है। गाँव में अक्सर बरसात के समय पानी के स्रोत गंदे हो जाते हैं। कुएं, हैडपंप के आसपास जमा गंदा पानी, खुले नाले और पशुओं की गंदगी पानी के स्रोत को दूषित कर सकती है।
0: जी हाँ।
1: अगर पानी पीने योग्य नहीं है, तो वह हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के बजाय बीमार कर सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे शरीर में पानी के कई महत्वपूर्ण काम होते हैं। जब पानी पीते हैं श्रोता साथियों, तो हमारे शरीर के अंदर जाकर अलग अलग अंगों तक पानी पहुंचता है।
1: बिल्कुल।
0: पानी शरीर का तापमान सामान्य रखने में मदद करता है। गर्मी के मौसम में पसीना निकलता है इससे, और शरीर को ठंडक रखने में भी इसकी भूमिका होती है। श्रोता साथियों, पानी भोजन को पचाने में मदद करता है। हमारे शरीर में भोजन को निगलने और पोषक तत्वों को सही जगह पहुंचाने में भी पानी की भूमिका होती है।
1: जी हाँ।
0: हम देखते हैं कि पानी शरीर में बेकार पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, और पसीने के माध्यम से श्रोता साथियों कई अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। पानी की कमी होने पर श्रोता साथियों शरीर में कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना और थकान जैसी परेशानियां हैं वो बढ़ सकती हैं। इसीलिए श्रोता साथियों, हमें पूरे दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना है।
1: बिल्कुल मनीषा, स्वच्छ पानी की शुरुआत हमारे अपने घर से होती है। हम छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर अपने परिवार को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। सबसे पहले जिस बर्तन में पानी रखा जाता है वह साफ होना चाहिए। पानी को खुले बर्तन में रखने से उसमें धूल, मक्खियां और अन्य गंदगी गिर सकती हैं। इसलिए पानी को हमेशा साफ बर्तन में रखें, संभव हो तो ढक्कन लगाकर रखें। पानी निकालने के लिए साफ गिलास और साफ डोंगे का इस्तेमाल करें। गंदे हाथ पानी के बर्तन में न डालें। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि पीने के पानी और अन्य कामों के पानी को अलग रखें। अक्सर हम पानी तो भर लेते हैं मनीषा, लेकिन उसके रख रखाव पर ध्यान नहीं देते। याद रखिए कि पानी स्रोत से साफ आया हो, लेकिन घर में गलत तरीके से रखा जाए तो वह दूषित हो सकता है। कई परिस्थितियों में पानी को उबालकर पीना एक अच्छा और सुरक्षित उपाय हो सकता है, विशेष रूप से जब पानी की गुणवत्ता पर संदेह हो, बरसात का मौसम हो, आसपास पानी से फैलने वाली बीमारियों की संभावना अधिक हो। तब पानी को अच्छी तरह उबालने से उसमें मौजूद कई हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो सकते हैं। हालांकि श्रोता साथियों, पानी को सुरक्षित बनाने का तरीका स्थानीय पानी के स्रोत और उसकी गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। इसलिए यदि किसी क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता को लेकर समस्या है, तो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग या जल विभाग की सलाह लेना भी जरूरी है। पानी को सुरक्षित बनाना केवल बीमारी होने के बाद की जिम्मेदारी नहीं है, बीमारी से बचाव पहले करना ही सबसे अच्छी समझदारी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें हमारे आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान पाए, यहीं बच्चों के लिए स्वच्छ पानी क्यों जरूरी है इसको लेकर बात करें, तो बच्चे हमारे परिवार का भविष्य है, लेकिन बच्चों का शरीर बड़ों की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है। गंदा पानी पीने से बच्चों को जल्दी पेट की समस्या हो सकती है। बार बार दस्त होने से बच्चों के शरीर में पानी और पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इससे बच्चा कमजोर महसूस कर सकता है, उसकी वृद्धि पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें सुरक्षित और स्वच्छ पानी मिले, पानी रखने वाला बर्तन साफ हो, बच्चों को खाने से पहले और शौचालय के बाद हाथ धोने की आदत हो, बोतल और गिलास नियमित रूप से साफ किए जाएं। बहुत छोटे बच्चों के लिए पानी और भोजन संबंधित सलाह उम्र के अनुसार स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर से लें। स्वच्छ पानी और स्वच्छता बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ श्रोता साथियों, केवल पानी पीना ही पर्याप्त नहीं है। अगर हमारे हाथ गंदे हैं, हम उन्हीं हाथों से खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या बच्चों को खाना खिलाते हैं, तो कीटाणु हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं। इसलिए हाथ धोना बहुत जरूरी है, खास तौर पर खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले, बच्चों को खाना खिलाने से पहले, शौचालय के उपयोग के बाद, पशुओं को छूने के बाद और गंदगी साफ करने के बाद। साबुन और साफ पानी से हाथ धोने की आदत हमें कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकती है। एक छोटा सा संदेश है, हाथ रहेंगे साफ हमारे बीमारी से बचेंगे सारे।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि स्वच्छ पानी केवल एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, श्रोता साथियों यह हमारे पूरे गाँव की जिम्मेदारी है। अगर गांव का तालाब गंदा है, नाली का पानी जल स्त्रोतों में जा रहा है या पानी के जल स्त्रोतों के आसपास श्रोता साथियों कूड़ा पड़ा है, तो इसका असर ही वो अंजलि जी हम देखते हैं कि पूरे गांव के लोगों पर पड़ता है। गांव के लोग श्रोता साथियों मिलकर जल स्त्रोतों की सफाई पर ध्यान दे सकते हैं। कूड़ा कचरा पानी के जल स्त्रोतों के पास हमें नहीं डालना चाहिए। साथ ही श्रोता साथियों, पानी के स्त्रोतों को नुकसान पहुंचाने वाली जो गतिविधियां हैं उनसे हमें बचना है। कहना चाहेंगे साथियों कि जब पूरा गांव मिलकर पानी को सुरक्षित रखेगा तो बीमारियों का खतरा उतना ही कम होता जाएगा।
0: जी हाँ मनीषा, अगर एक घर अपने पानी को साफ रखता है तो एक परिवार स्वस्थ रह सकता है, लेकिन अगर पूरा गांव अपने जल स्त्रोत की देखभाल करता है तो पूरा समुदाय स्वस्थ बन सकता है। इसलिए हमें अपने आसपास लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। अगर किसी घर में बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो हमें साफ पानी, हाथों की सफाई और भोजन की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर गांव में पानी की गुणवत्ता को लेकर समस्या है तो पंचायत और संबंधित विभाग तक इसकी जानकारी पहुंचानी चाहिए। समस्या को छिपाने से समाधान नहीं निकलता, जागरूकता और सामूहिक प्रयास से ही स्वच्छ और स्वस्थ समाज बनाया जा सकता है। श्रोता साथियों, नदी कुआं हो या घर की टंकी, सफाई रखो हर जगह पक्की। स्वच्छ पानी जब घर आएगा, स्वस्थ परिवार मुस्कुराएगा। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि हमारे जीवन में पानी जो है वो बहुत जरूरी है, लेकिन असुरक्षित पानी बीमारी का कारण भी बन सकता है। इसलिए हमें केवल पानी की उपलब्धता पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि उसकी स्वच्छता और सुरक्षित उपयोग पर भी ध्यान देना होगा। अपने घर में साफ पानी रखें, बच्चों को सुरक्षित पानी दें, हाथों की सफाई का ध्यान रखें, अपने गांव के जल स्त्रोतों को स्वच्छ रखने में योगदान दें। याद रखिए कि स्वच्छ पानी अपनाएंगे बीमारी को दूर भगाएंगे। स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज, यही है जीवन का सच्चा राज।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि जहां दूषित पानी श्रोता साथियों हमारे लिए नुकसान करता है, वहीं पानी की कमी भी हमारे शरीर के लिए परेशानी पैदा कर सकती है।
0: बिल्कुल,
1: जब श्रोता साथियों शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है तो डिहाइड्रेशन यानी कि श्रोता साथियों पानी की कमी ही वो बढ़ती जाती है हमारे शरीर में। पानी की कमी में श्रोता साथियों प्यास लगना, मुंह सूखना, कमजोरी और चक्कर जैसी परेशानियां हैं वो हो सकती हैं। बहुत अधिक पानी की कमी हो जाती है अंजलि जी, तो हम देखते हैं कि जो बीमारियां हैं वो भी हमारे शरीर के अंदर बढ़ने लगती हैं। इसलिए श्रोता साथियों दिन भर में प्यास और शरीर की जरूरत के अनुसार हमें पर्याप्त पानी पीते रहना जरूरी है। यहाँ श्रोता साथियों बीमारी के समय पानी को पीना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल मनीषा, एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए हमें केवल अपने घर की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने आसपास के पानी के स्रोतों की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। गांव का हैंडपंप, सार्वजनिक टंकी, कुआं और अन्य जल स्रोत केवल किसी एक व्यक्ति के नहीं होते, बल्कि पूरे समुदाय के धरोहर होते हैं। यदि हम इन्हें गंदा होने देंगे तो उसका असर किसी एक परिवार पर नहीं बल्कि पूरे गांव की सेहत पर पड़ सकता है। जरूरत है कि हम बच्चों को बचपन से ही पानी की कीमत और स्वच्छता का महत्व सिखाएं, उन्हें ये समझाएं कि पानी की एक एक बूंद कीमती है और पीने का पानी साफ रखना भी उतना ही जरूरी है। जब बच्चे सही आदत सीखेंगे तो वे बड़े होकर एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: स्वच्छ पानी का सवाल केवल बीमारी से बचने का सवाल नहीं है, यह बच्चों के भविष्य, महिलाओं के स्वास्थ्य, परिवार की खुशहाली और पूरे समाज की प्रगति से जुड़ा हुआ विषय है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने परिवार की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा सकता है, मेहनत कर सकता है, बच्चों की देखभाल कर सकता है और समाज के विकास में योगदान दे सकता है। इसलिए हमें बीमारी आने का इंतजार नहीं करना है। समझदारी इसी में ही है कि हम पहले से ही सावधानी बरतें, अपने घर के पानी को सुरक्षित रखें, आसपास सफाई बनाए रखें, दूसरों को भी जागरूक करें। अगर कहीं पानी गंदा है या जल स्रोत की स्थिति खराब है तो चुप रहने के बजाय सामूहिक रूप से समाधान के लिए कदम उठाएं। हमें ये भी समझना होगा कि स्वच्छता किसी एक दिन का अभियान नहीं बल्कि रोजाना की जिम्मेदारी है। जिस दिन हम अपने घर, परिवार और गांव में पानी को लेकर सजग हो जाएंगे, उसी दिन से बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक मजबूत कदम उठ जाएगा। आज से हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम पानी को व्यर्थ नहीं बहने देंगे, पीने के पानी की सुरक्षा रखेंगे, अपने जल स्रोतों को गंदा नहीं होने देंगे और अपने परिवार व समुदाय को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि साथियों, बदलाव की शुरुआत हमेशा किसी बड़े काम से नहीं होती, कभी कभी एक ढक्कन से ढका हुआ पानी का बर्तन, साफ हाथों से पानी पीने की आदत, बच्चों को सही जानकारी देना और जल स्रोतों के आसपास सफाई रखना भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। याद रखिए, जहां पानी सुरक्षित होता है वहां परिवार की सेहत मजबूत होती है, जहां समुदाय जागरूक होता है वहां बीमारियों की चुनौतियां कम होती है। इसलिए हम केवल स्वच्छ पानी की मांग करने वाले नागरिक न बने बल्कि पानी को स्वच्छ रखने वाले जिम्मेदार नागरिक भी बने, क्योंकि आज हमारी छोटी सी सावधानी आने वाले कल में हमारे बच्चों और पूरे समुदाय के लिए स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य का आधार बन सकती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार साथियों, कहते हैं कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती और हौसलों की कोई सीमा नहीं होती। इंसान की पहचान उसके बीते हुए वर्षों से नहीं बल्कि उसके भीतर आगे बढ़ने के जज्बे से होती है। कोई कम उम्र में इतिहास रच देता है तो कोई जीवन के कई पड़ाव पार करने के बाद अपनी नई पहचान बनाता है। जी हाँ साथियों, इन्हीं बातों के साथ आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वीकार कीजिएगा साथियों मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हम जब भी हाजिर होते हैं तो हमारी आपसे बातचीत रहती है एक नए विषय को लेकर। आज भी साथियों कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। जैसा कि मेरी शुरुआत की महत्वपूर्ण बातों से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो विषय है वो काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती और हौसलों की कोई सीमा नहीं होती, और यही हमारा आज का विषय है कि उम्र नहीं बल्कि हमारा हौसला हमारी सफलता को तय करता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी कि जीवन में अक्सर हम खुद ही अपने लिए सीमाएं तय कर लेते हैं। कभी हम कहते हैं कि अब मेरी उम्र पढ़ाई करने की नहीं रही, तो कभी हम ये कहते हैं कि अब नया काम शुरू करने में बहुत देर हो चुकी है। कभी आपने किसी युवा को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं अभी काफी छोटा हूँ, मुझसे तो क्या ही हो जाएगा। और कभी कोई बुजुर्ग ये सोचता है कि अब मेरी उम्र निकल गई, अब मैं नया कार्य कैसे शुरू करूँगा। लेकिन क्या सच में सफलता की कोई उम्र होती है दोस्तों? क्या सपने देखने के लिए उम्र तय की जा सकती है? क्या सीखने की कोई आखिरी तारीख होती है? और क्या केवल कम उम्र में सफलता पाने वाला व्यक्ति ही सफल कहलाता है? ये ढेर सारे ऐसे प्रश्न है जो हमारे मन में चलते हैं। तो इसका जवाब है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सफलता का संबंध केवल उम्र से नहीं बल्कि हमारी सोच, मेहनत, लगन और सबसे बढ़कर हमारे हौसले से होता है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं इसी विषय को लेकर आपसे ढेर सारी बातें करूंगी और हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे जो हौसले होते हैं वो अगर मजबूत होंगे तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस विषय पर श्रोता साथियों बातें हम ढेर सारी करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत में सुनते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

दोस्तों, ये गीत तो यहाँ पूरा हो गया। अब इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि गीत से पहले विषय से तो रूबरू मैं आपको करा ही चुकी हूँ कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि उम्र नहीं, हमारे हौसले हमारी सफलता को तय करते हैं। दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगी कि सफलता का संबंध केवल उम्र से नहीं बल्कि हमारी सोच, मेहनत और सबसे बढ़कर हमारे हौसले से होता है, क्योंकि उम्र तो केवल जीवन के वर्षों की गिनती होती है, लेकिन हौसला हमारे अंदर की वह ताकत है जो हमें गिरने के बाद फिर से उठना सिखाती है। जब हौसला मजबूत होता है तो मुश्किल रास्ते भी हमें आसान लगने लगते हैं। जब मन में कुछ अच्छा करने की इच्छा होती है आपके, तो साधनों की कमी भी हमें ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती। और जब इंसान ये तय कर लेता है कि उसे आगे ही बढ़ना है, तो उम्र भी उसके रास्ते की दीवार नहीं बनती। हम जैसा कि जानते हैं कि कई लोग जीवन में बहुत कम उम्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सफलता जीवन के काफी लंबे संघर्ष के बाद मिलती है। इसलिए किसी की सफलता को देखकर ये मत सोचिए कि मैं तो पीछे रह गया या रह गई, बल्कि ये सोचिए कि मेरा समय भी आएगा, बस मुझे अपने कदम रोकने की नहीं आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, जीवन की दौड़ में हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। किसी को मंजिल जल्दी मिल जाती है तो किसी को थोड़ी देर से, किसी को कई बार रास्ता बदलना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति चलते रहने का हौसला रखता है उसके लिए मंजिल दूर जरूर हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं होती। इसलिए दोस्तों, ये जो बात कही गई है कि उम्र नहीं, हौसला हमारी सफलता तय करता है, तो ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि हमारे समाज में कई बार उम्र को लेकर ऐसी धारणाएं बना दी जाती है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। जैसे कि आपने खुद देखा होगा कि बचपन में हमें कहा जाता है तुम अभी छोटे हो, जवानी में कहा जाता है पहले जिम्मेदारियां संभालो, और जब उम्र बढ़ने लगती है तो कहा जाता है कि अब तो इस कार्य को करने की तुम्हारी उम्र ही निकल गई। यानी कि दोस्तों, जीवन के हर पड़ाव पर कोई ना कोई हमें ये बताने के लिए तैयार रहता ही है कि हमें आखिर करना क्या है और हम क्या नहीं कर सकते। लेकिन एक सवाल आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हम खुद के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। अगर दोस्तों हम खुद की मान ले कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो शायद हम कोशिश ही नहीं कर पाएंगे, और जिस दिन कोशिश बंद हो जाएगी उसी दिन आगे बढ़ने का रास्ता भी बंद होने लगता है। लेकिन अगर हमारे अंदर सीखने की इच्छा बनी हुई है तो जीवन हमें हर उम्र में कुछ नया सिखा सकता है। अगर आपको बताऊं तो एक बच्चा चलना सीखता है, लेकिन वो कई बार गिरता भी है। वह गिरने के बाद ये नहीं सोचता कि अब मैं चलने की कोशिश ही नहीं करूंगा, वह फिर से उठता है, फिर कदम बढ़ाता है, फिर गिरता है, और एक दिन वह पूरी तरीके से चलना सीख जाता है। जीवन में बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे सामने कठिनाइयां आएंगी, हम असफल होंगे, कभी कभी तो लोग हमारा मजाक भी उड़ाएंगे, कभी हमारे फैसलों पर सवाल उठेंगे साथियों, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करने से नहीं डरते। तो इस तरीके से, जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें मैं आगे भी ऐसे ही जारी रखूंगी कि हम अपने हौसलों से सफलता कैसे तय कर सकते हैं। लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में, तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, इस गीत के बाद मैं फिर से रुक करती हूँ हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में बातें तो हमारी आपसे बहुत अच्छी चल रही थी, और गीत से पहले भी हम जान पाए थे कि हम किस प्रकार अपने हौसलों से अपनी सफलता को तय कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कई युवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, पहली बार सफलता नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं, मेरी तो उम्र बढ़ रही है और मेरे दोस्त तो अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन क्या केवल पहली असफलता ये तय कर देती है साथियों कि हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, या हम जीवन में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूरत है अपनी कमियों को समझने की और तैयारी का तरीका सुधारने की, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण अपने हौसले को कमजोर नहीं होने देने की। दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो वर्षों तक परिवार की जिम्मेदारियां संभालती रहती हैं, जैसे कि बच्चों की देखभाल, घर का काम, परिवार की जिम्मेदारियां, उन सब में ही उनका समय निकल जाता है। फिर एक दिन उनके मन में ये इच्छा होती है कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, मैं कोई हुनर सीखना चाहती हूँ, मैं अपना काम शुरू करना चाहती हूँ। लेकिन कई बार उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अब मेरी उम्र क्या है और अब मैं शुरुआत कैसे करूँ। लेकिन ऐसे में उन महिलाओं को हमें ये कहना चाहिए कि सपनों को शुरू करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। अगर किसी महिला को सिलाई आती है तो वह उम्र निकलने के बाद भी अपने हुनर को आगे बढ़ा सकती है। अगर कोई महिला पढ़ना चाहती है तो वह आज भी अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती है। अगर कोई महिला आत्मनिर्भर बनना चाहती है तो वह छोटे छोटे कदमों से अपना रास्ता बना सकती है। तो ऐसे में कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन दोस्तों हमारा हौसला बड़ा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब हम किसी सफल व्यक्ति की कहानी सुनते हैं तो अक्सर हमें केवल उसकी सफलता दिखाई देती है, लेकिन उस सफलता के पीछे छिपे संघर्ष के बारे में हम कभी बात नहीं करते। हमें मंच पर खड़ा व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन के वो दिन हमें नहीं दिखाई देते जब उसने अकेले संघर्ष किया होगा। हमें उसकी उपलब्धियां दिखाई देती है, लेकिन उसके डर, उसकी असफलताएं और उसके टूटने के पल हमें दिखाई नहीं देते। साथियों, सफलता पाने वाला व्यक्ति भी इंसान होता है, उसे भी डर लगता है, वह भी कभी निराश होता है और वह भी कई बार हारता है। लेकिन एक बात उसे दूसरों से अलग बनाती है और वो ये है कि वह हारने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता, और देखा जाए तो यही हौसला होता है। साथियों, हौसला ये नहीं है कि हमें कभी डर नहीं लगता, हौसला ये है कि डर लगने के बावजूद हमें आगे कैसे बढ़ना है। हौसला ये नहीं होता कि हमें कभी परेशानी नहीं होगी, हौसला तो ये है कि परेशानी आने पर भी हम समाधान खोजते हैं और फिर भी आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहते हैं, और यही जीवन हमारी असली ताकत का हमें परिचय देता है। श्रोता साथियों, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में बातें मेरी आपसे ढेर सारी रही, हमने जाना कि उम्र केवल एक संख्या होती है, लेकिन हमारे हौसले हमारी जीवन की असली शक्ति होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी उम्र को अपनी सीमा नहीं बनाना है। हम अपनी जीवन की नई शुरुआत करने से नहीं डरेंगे, हम असफलता से सीखेंगे और सफलता को अपना हौसला बनाएंगे। हम अपने सपनों को जिंदा रखेंगे और जीवन में हर पड़ाव पर अपने हौसलों को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करेंगे। श्रोता साथियों, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि न उम्र की सीमा रोक सके न समय की कोई दीवार, जिसके मन में हौसला हो वही करता है जीवन में बड़ा कमाल। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो केवल रास्ते देखते हैं, मंजिल उनके कदम चूमती है जो मुश्किलों में भी चलते रहते हैं।

श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेना चाहूंगी। उम्मीद करती हूं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी आप संपर्क कर सकते हैं साथियों। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश।

0: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिंदगी पर बात की शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात्काली में जीवन जीवन, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगाव, जंक फूड तक ही दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। ओवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करे भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।